ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 और 11 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। कृषिपुरा में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार हिंदी में होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य

0: साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। इसके अलावा आप सुन सकते हैं हमारा प्रोग्राम्स न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मातृभूमि को अर्पित ये श्रद्धा सुमन यानी देशभक्तिपूर्ण गीत।

ईश्वर तो बस एक सभी का, कोटि रूप और कोटि है नाम। मुसलमान का जो भी अल्लाह, वही कबीरा का है राम। सिखों का जो वाही गुरु है, वही बौद्ध का स्वनिर्वाण। ईसाई का जो भी ईसा, वही हिंदू का है भगवान।

इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने सुमन कल्याणपुर, जानी बाबू, जगजीत सिंह और साथियों की आवाजों में भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है कार्यक्रम प्रकाश किरण का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भर्तृहरि के नीति शतक से पाठ।

जिस मनुष्य को साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला का ज्ञान नहीं होता, वह मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। अंतर यह है कि ऐसा मनुष्य पशु होते हुए भी घास नहीं खाता और जीवित रहता है। कवि का कथन अत्यंत मार्मिक है, क्योंकि कला विहीन जीवन कभी सुसंस्कृत नहीं हो सकता, संस्कृति विहीन मनुष्य महान पद का अधिकारी नहीं होता। मनुष्य के जीवन में महत्ता के लिए क्या आवश्यक है? भर्तृहरि कहते हैं,

शांति। जिन व्यक्तियों के पास ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, सदाचार नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य इस विनाशशील संसार में पृथ्वी पर बोझ ही बने रहते हैं। वे मनुष्य के रूप में पशुओं के समान घूमते हैं। विचार पूर्वक देखने पर प्रत्येक गुण एक दूसरे से गुथा हुआ प्रतीत होता है। मनुष्य का जीवन सफल कब कहा जाता है? जब वो कुछ गुणों को धारण कर लेता है। भर्तृहरि कहते हैं, विपदे धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदा सेवा पटुता युधि विक्रमः यशसे चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृते सेद्धमिदं हि महात्मनाम। विपत्ति में धीरज रखना, समृद्धि प्राप्त हो जाने पर सहनशील होना, सभा में वाणी की चतुरता दिखाना, युद्ध में शक्ति का प्रदर्शन करना, यश के कार्यों में रुचि लेना, शास्त्रों का सतत अध्ययन का व्यसन होना, ये गुण महान आत्माओं में प्रकृति से सिद्ध होते हैं। जिस व्यक्ति में ये गुण होंगे वह मनुष्य समाज में प्रतिष्ठित होगा, महान कहलाएगा। जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए कवि ने प्राकृतिक स्वभाव के गुणों का भी निर्देश किया है। महान मनुष्य का सौंदर्य क्या है? महान मनुष्य से ही समाज सुखी रह सकता है। उन गुणों की ओर भर्तृहरि कहते हैं, करेश लाघ्यस्त्याग शिरसे गुरु पाद प्रणयिता।

0: मुखे सत्यावाणी विजये भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदय स्वस्था वृत्ति श्रुतिरधिगतैकव्रतफलम् विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। मनुष्य संपत्ति से महान नहीं होता। आज मनुष्य धन के लालच में अपना महत्व खो रहा है। महान वह है जिसके हाथ में प्रशंसनीय त्याग है, सिर पर अपने से बड़ों का प्रेम रूप आशीर्वाद है, मुख में सत्यवाणी है, अतुलनीय विजय प्राप्त करने वाली वीरता भुजाओं में है, हृदय में स्वस्थ विचार है, ज्ञान प्राप्ति की एकमात्र सफलता है। ऐसे व्यक्ति यदि संपत्तिहीन भी हैं तो भी ये गुण ही उनके आभूषण हैं। संपत् सुमहताम चित्तम भवत्युत्पलकोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। संपत्तिशील होने पर महान मनुष्य का हृदय कमल के समान कोमल हो जाता है, अर्थात सुगंध विस्तार की भावना, दूसरों को अपने सौंदर्य से प्रसन्नता देना आदि कमल के गुणों के समान विनम्रता, परोपकार भावना, क्षमा आदि गुण आ जाते हैं। विपत्ति के आने पर पर्वत के समान कठोर हो जाते हैं। महान मनुष्य संघर्ष से नहीं डरते, संघर्ष में विचलित नहीं होते, पर्वत के समान अडिग रहते हैं। मनुष्यता के विकास के लिए विनम्रता ही आवश्यक है, विनम्र ही परोपकारी होता है।
1: आपने सुना भर्तहरि के नीति शतक से पाठ, कार्यक्रम था प्रकाश किरण। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, जिसमें अब हम आपको जानकारी देंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर एस के सिंह आपको जानकारी देंगे जायद में कद्दू कुल की सब्जियों के विषय में। स्वास्थ्य चर्चा की जाएगी दाद खाज खुजली के कारण और उपचार विषय पर। जानकारी देंगे डॉक्टर रूपक और समय रहेगा सुबह 7:10 का। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास सुना जा सकेगा सुबह 7:30। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुबह 8:45 पर।

लखनऊ केंद्र से सामयिक चर्चा आप सुन सकेंगे सुबह 9:15 पर। लोक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सुबह 9:45 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पॉप सिंगर साथियों की आवाजों में कुछ ब्रज लोकगीत। समय ध्यान रखिएगा सुबह 9:45। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता सुना जा सकेगा सुबह 10 बजे। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे आप सुन सकेंगे गजेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत राग अहीर भैरव। साथियों, दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 सुनिएगा सुबह 11 बजे। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित समीक्षा। लोकमंजरी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12 बजे का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुनीता धाकड़ की आवाज में कुछ ब्रज लोकगीत। नई फिल्मों से फिल्म संगीत प्रस्तुत किया जाएगा दिन में 12:30 बजे। बालमंडल कार्यक्रम हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता सुन सकेंगे दिन में 1:15 पर। इस कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे चर्चा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ दिवस के इतिहास पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा दोपहर 1:45 पर। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे मेहंदी हसन। आज के अतिथि कार्यक्रम का प्रसारण समय दोपहर 2:30 का। आज सुनिएगा भेंट वार्ता डॉक्टर त्रिमोहन तरल से।

नीरज जैन की बातचीत। युववाणी कार्यक्रम शाम 5:30 बजे, ग्रामीणलोक कार्यक्रम शाम 6 बजे और मजदूर मंडल कार्यक्रम प्रतिदिन की तरह शाम 6:30 बजे। विविध कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:10 पर आप सुन सकेंगे वार्ता। पर्यावरण सुरक्षा के बढ़ते खतरे विषय पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर कुमार किंजल्य भारद्वाज। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7:30 बजे। चित्रपट संगीत सुनेगा रात्रि 8:30 बजे। दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम रेडियो स्कोप के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका सुनी जा सकेगी रात्रि 9:30 बजे और रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण। तो ये थी कार्यक्रमों संबंधी जानकारी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: आपने सुना रामचरित मानस कांड का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। समय हुआ है कार्यक्रम खेती की बातें का। इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर SK सिंह आपको जानकारी देंगे जायद में कद्दू कुल की सब्जियों के विषय में। आइए सुनते हैं।
1: हमारे देश की जनसंख्या अधिकतर शाकाहारी है, अतः हमारे आहार में सब्जियों का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा सब्जियों में अनिवार्य प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वसा और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कच्ची सब्जियां पकी हुई सब्जियों की अपेक्षा अधिक गुणकारी होती हैं। इस समय की सब्जियां सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाती हैं, क्योंकि इस समय दूसरे अन्य मुख्य फसलों का अभाव होता है। हमारा देश सब्जी उगाने में चीन के बाद संसार में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि प्रति व्यक्ति सब्जी का सेवन बहुत कम है। भोजन में पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को अपने संतुलित भोजन के लिए 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 200 ग्राम सब्जियों की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। सब्जियों को वैज्ञानिक तरीके से उगाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं, जिससे अधिक आय प्राप्त हो सकती है। गर्मी के मौसम में प्राप्त होने वाली सब्जियां सर्दी समाप्त होने तथा गर्मी प्रारंभ होने के पूर्व बसंत ऋतु में उगाई जाती हैं। ये सब्जियां खेत खाली होने पर फरवरी से मार्च तक लगा देना चाहिए। गर्मी के मौसम में उगने वाली कद्दू वर्गीय सब्जियों में अधिकतर बेल वाली सब्जियां आती हैं, जिनमें लौकी, चप्पन कद्दू, टिंडा, करेला, सीताफल, तोरई तथा बहुत सारी बेल वाली सब्जियां हैं। किसान भाई अच्छी उपज लेने के लिए उचित किस्मों का चयन करके अधिक लाभ ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियां उगाने के लिए दोमट व बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। खेत की अच्छी प्रकार जुताई करके खरपतवार रहित बनाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 4 व 5 जुताई देसी हल से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल व भुरभुरा बना लेना चाहिए। अधिक पैदावार लेने के लिए अच्छे बीज तथा प्रमाणित बीज का होना अति आवश्यक है। प्रमाणित बीज कृषक भाइयों को राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम, उद्यान विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों तथा नई दिल्ली पूसा से प्राप्त किए जा सकते हैं। घिया, तोरई, करेला, टिंडा को बोने से पहले 24 घंटे पहले भिगो लेना चाहिए तथा बुवाई से पहले बीज को किसी फफूंदी नाशक से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए 2 ग्राम कैप्टान या थीरम को प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों को उठी हुई क्यारियों में नालियों के किनारे पर बोया जाता है, जिससे बेल व फल सूखी पर रहें तथा जड़ों को नालियों से पानी मिलता रहे। ऐसा करने से अच्छी गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होते हैं। नालियां पूरब से पश्चिम दिशा में बनानी

0: नालियां 2 से 3 मीटर के अंतर पर 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी तथा 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। एक स्थान पर 2 बीज 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोने चाहिए। 4 पत्तियां आने पर एक स्वस्थ पौधा छोड़ते हुए बाकी सभी पौधों को निकाल देना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों की जातियों के विषय में कृषक भाइयों को विशेष ध्यान रखना जरूरी है तथा वह जातियां अपनानी चाहिए जो बाजार में आसानी से प्राप्त हो सकें तथा पैदावार की दृष्टि से उत्तम हो। लौकी की पेशा पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, अर्काबहार जातियां सबसे उत्तम रहती हैं। तोरई की कल्याणपुर चिकनी, पूसा नस्तार जातियां अच्छी हैं। करेला में प्रिया, अर्का हरित, कोयम्बटूर लौंग जातियां पैदावार की दृष्टि से सबसे उत्तम हैं तथा यह बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियां का बीज 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोना चाहिए। एक एकड़ खेत के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियों में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। बुवाई के समय नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत में मिला देनी चाहिए। शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में 1 महीने बाद और फल आने के समय डालना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों से शीघ्र फसल लेने तथा एक ही खेत में अतिरिक्त फसल लेने की दृष्टि से सब्जियों की नर्सरी पॉलीथीन की थैली में तैयार करना चाहिए। पॉलीथीन थैली में जनवरी माह में बुवाई करनी चाहिए। इस तरीके से फसल लेने के लिए 15 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी थैली उपयुक्त रहती है। लिफाफे के नीचे 2 से 3 छेद कर देने चाहिए। थैली के अंदर मिट्टी व सड़ी गोबर की खाद की बराबर मात्रा थैली में भर देनी चाहिए तथा फुब्बारे से सिंचाई करनी चाहिए। 30-40 दिन बाद पौधों की खेत में रुपाई कर देनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय फसलों में 4-5 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए तथा खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। अक्सर यह देखने में आता है कि खेत में फूल ही फूल नजर आते हैं, परंतु फल बहुत कम लगते हैं। इसका कारण यह होता है कि पौधों में नर फूलों की संख्या मादा फूलों से काफी अधिक होती है। पौधों पर मादा फूलों की संख्या अधिक होने पर फल अधिक लगते हैं। मादा फूलों की संख्या अधिक लाने के लिए 3 से 4 पत्तियों वाली अवस्था होने पर मौलिक हाइड्रोजाइट की 5 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करके लाभ मिलता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी तथा लाल कीड़े का प्रकोप अधिक होता है। फल मक्खी फलों के नीचे अंडे देती है। अंडों से कीट निकलकर फलों के अंदर घुसकर फल खाते हैं तथा फल सड़ने लगते हैं। लाल कीड़ा पत्तियों को खाता है जिससे काफ़ी हानि होती है। बचाव के लिए मेलाथियोन 50 EC की 1.25 लीटर मात्रा को 1,000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 छिड़काव करना लाभकारी रहता है। गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों के फल नरम व मुलायम अवस्था में तोड़ना चाहिए। कद्दू के फल कच्चे अथवा पके दोनों अवस्था में तोड़े जाते हैं। फलों की तुड़ाई सुबह करनी चाहिए तथा फलों को ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इस प्रकार खेती करने से लौकी 150 से 300 कुंटल, कद्दू 250 से 300 कुंटल, तोरई 100 से 125 कुंटल की पैदावार प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो सकती है तथा अन्य सब्जियों की भी पैदावार होती है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से खेती करने से किसानों को काफी लाभ प्राप्त होता है।
1: जायत में कद्दू कुल की सब्जियां, इस विषय में अभी आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर SK सिंह। कार्यक्रम था खेती की बातें। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर और

0: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। समय हुआ है संस्कृत समाचार का, जो आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके पश्चात समाचार हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम् एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयल व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000तम वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामी 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे 3:30 मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स

0: दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना

0: Himalayan West Bengal and Sikkim. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 और 28 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता दाद खाज खुजली के कारण और उपचार विषय पर। वार्ताकार हैं डॉक्टर रूपक।
2: आज मैं आपके सामने दाद खाज खुजली के बचाव एवं उपचार के विषय में अपने विचार लिखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, दाद या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस गर्म एवं उमस वाले मौसम में ज़्यादा पनपते हैं। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता किसी वजह से कमज़ोर होती है या हमारी हाइजीन पुअर होती है, जैसे कि नित्य स्नान न करना या अपने खान पान में पौष्टिक आहार को सम्मिलित न करना, तब यह इन्फेक्शन हमें जल्दी पकड़ते हैं। ये सिर से लेकर पैर तक कहीं भी पनप सकते हैं। प्राय सिर में फंगल इन्फेक्शंस 14 साल से कम आयु के बच्चों में अक्सर देखे जाते हैं। इसमें जहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उस जगह बाल तक गायब होने लगते हैं। ऐसे ही जांघों का फंगल इन्फेक्शंस, जिसे हम धोबीज इच कहते हैं, यह मर्दों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही पैर का फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा मिलता है जो ज़्यादा देर तक जूते पहने होते हैं या जिनमें पैरों के उंगलियों के बीच में विशेष तौर से पसीना बहुत देर तक ठहरता है। इसलिए इसे हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें खिलाड़ियों में अक्सर ये देखने को मिलता है। अक्सर दाद में खुजली एक प्रमुख लक्षण होता है और ये बढ़ते समय एक गोलाकार का रूप ले लेता है। इसीलिए इस इन्फेक्शन को आम भाषा में हम रिंग वर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। जय यह शरीर के बहुत सारे हिस्से को प्रभावित करता हो या बहुत तेज़ी से जब फैलता है, तो यह डायबिटीज़ या मधुमेह एवं HIV इन्फेक्शन का संकेत देता है। अतः दाद से बचने के लिए हमें अपने खान पान के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों से हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ती है। बदन पर गीला वस्त्र न धारण करना व बंद जगहों जैसे कि कांख, रागें व पैर की उंगलियों के बीच पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका संभव हो तो अपने ऑफिस में कुछ देर के लिए अगर आप जूते मोज़े उतार के बैठ जाएं तो ये अच्छा होगा, या मोज़े जो हैं कॉटन सॉक्स पहनें और हमेशा सूखे मोज़े पहनें, कभी नमी ना हो। आजकल इन दाँत के इलाज या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का इलाज अमूमन 6 से 8 हफ्तों में बड़े आराम से संभव है। पर हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी केमिस्ट के द्वारा या झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज ना लें, वरना ये और विकृत हो जाता है। हमेशा एक विशेषज्ञ से ही सलाह लें। ऐसे ही सूखी खाज या स्केबीज भी पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो, एक बंद कमरे में या छोटे सी जगह में कई सारे रोग रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में ये स्केबीज बहुत कॉमन है। इसका भी मुख्य लक्षण अत्यंत खुजली होना, विशेष तौर पर सोते समय। ये चूंकि एक छूत की बीमारी है, अतः ये परिवार के और सदस्यों को भी प्रभावित करती है। इसका भी इलाज एक विशेषज्ञ द्वारा सुचारू रूप से संभव है। तो मैं अंत में एक बार ये बात को फिर दोहराना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी अवस्था में जब भी दाद, खाज या खुजली हो, तो केमिस्ट या झोला छाप डॉक्टरों द्वारा कभी भी इलाज ना लें, क्योंकि जब आप इनके द्वारा जब कोई भी दवा लेते हैं तो इसमें अक्सर स्टीरॉयड नामक औषधि होती है, जो आपके मूल जो रूप है उस बीमारी के स्वरूप को भी बदल देती है। इससे बाद इसको ठीक करने में और परेशानी होती है, आपका खर्चा भी बढ़ता है, समय भी बढ़ता है, और कभी कभी विशेषज्ञ को भी इसको ठीक करने के लिए काफ़ी जूझना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन हो, जब भी आपको दाद, खाज या खुजली आपको परेशान करे, तो एक विशेषज्ञ के द्वारा ही इसके उपचार के लिए प्रयास करें।
1: दाद, खाज, खुजली के कारण और उपचार, इस विषय में

अभी आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रूपक। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। और आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक, नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा सहित देश के 47 अलग अलग स्थानों पर कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है।

0: आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
1: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की।

0: इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में 20 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना की चर्चा करते हुए इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स

0: लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बांदा प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
2: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन बहुत नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
1: उधर अयोध्या में कल तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर में MP MLA सेशन कोर्ट ने कल सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है, लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है। महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह और 30 अज्ञात समर्थक भी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल फिर वृद्धि की गई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में करीब 86 पैसे और डीजल में करीब 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम कल घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। IPL मुकाबले में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच को पंजाब ने कप्तान श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के बल पर 7 विकेट से जीत लिया। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ की टीम को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए और पंजाब को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया, जिसे उसने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। इस हार के साथ IPL के इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर समाप्त हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा। कहा, देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए IPL मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा

0: शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। साथियों, आज के कार्यक्रम में रोजाना की तरह अपने आसपास की खबरें तो हम लेकर आए ही हैं, साथ ही साथ हम आज आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस पर क्या है यह भी चर्चा करते हैं, साथ ही राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ दिवस पर भी चर्चा करेंगे। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में आपको जानकारी देंगे और आपके मनोरंजन के लिए सुनवाएंगे आपको गीत। तो आइए शुरुआत करते हैं एक चर्चा के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस। साथियों, मारखोर दिवस क्या है ये इसके बारे में आपको बताते हैं। मारखोर एक जंगली बकरी की प्रजाति है जो मुख्य रूप से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके लंबे घुमावदार सींग और मजबूत शरीर इसे अन्य जानवरों से अलग पहचान देते हैं। मारखोर का नाम फारसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मार अर्थात सांप और खोर अर्थात खाने वाला। लोक कथाओं में ये माना जाता है कि मारखोर सांपों का शिकार करता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। साथियों, मारखोर केवल एक सुंदर वन्य जीव ही नहीं है बल्कि हमारे पर्यावरणीय संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश शिकार, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण इसकी संख्या लगातार कम होती गई और यही कारण है कि आज ये जीव संरक्षण की विशेष आवश्यकता रखता है। विश्व के कई देशों ने मिलकर मारखोर को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की जा रही है और अवैध शिकार पर सख्त रोक लगाई जा रही है। इन प्रयासों का ही ये परिणाम है कि अब कुछ क्षेत्रों में मारखोर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये हमें ये सिखाता है कि यदि मनुष्य ठान ले तो वो प्रकृति की रक्षा भी कर सकता है। साथियों, प्रकृति केवल पेड़ पौधों और जानवरों का समूह नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। यदि वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे तभी पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पशु पक्षियों और जंगलों की रक्षा करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस हमें ये संदेश देता है कि हर जीव इस धरती के लिए महत्वपूर्ण है। हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रकृति को सुरक्षित रखना होगा। तो साथियों, हम तो आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आइए संकल्प लें कि हम वन्य जीवों की रक्षा करेंगे।

पर्यावरण संरक्षण को अपनाएंगे और प्रकृति के प्रति अपनी जो भी जिम्मेदारी है, जो हमसे बन सकता है, वो जरूर करेंगे। तो ये थी एक चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस पर। और साथियों, अब आपको देंगे अपने आसपास की सूचनाएं।

तो ये है पहली सूचना। सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा आज 11,500 अभ्यर्थी बैठेंगे। जी हाँ साथियों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा आज यानी रविवार को 28 केंद्रों पर होगी। दो पालियों में होने जा रही परीक्षा में 11,786 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सीसीटीवी कैमरों से अभ्यर्थियों पर नजर रखी जाएगी। नकल रोकने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और दो दो सहायक सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है। वहीं शनिवार शाम यानी कल शाम को अभ्यर्थियों का शहर में पहुंचना शुरू हो गया। आगरा कॉलेज सहित अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा अवधि में केंद्र के 100 मीटर के दायरे की सभी फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी और जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। विधि और बीएड की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। डॉ बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड और विधि यानी लॉ की परीक्षा के लिए शनिवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए। परीक्षा 25 मई से ही होगी। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया गया है। राजकीय महाविद्यालय और एडेड कॉलेजों को ही केंद्र बनाया गया है। हालांकि प्रवेश पत्रों में तमाम प्रकार की गलतियां होने के कारण छात्रों में रोष है। बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 25 मई से परीक्षा कराने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया था। इसके बाद से ही विश्वविद्यालय में शिक्षक और छात्रों ने जुलाई में परीक्षा कराने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। कुलपति सचिवालय, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन फाइनली इसकी परीक्षा 25 मई से ही होगी। अगली खबर भी डॉ बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की है। जिन कॉलेजों की संबद्धता सत्र 2026-27 में समाप्त हो रही है, नए विषय और पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, उनके द्वारा 17 अप्रैल तक आवेदन नहीं किए गए हैं, उन्हें एक और मौका दिया गया है। ₹25,000 जुर्माने के साथ संबद्धता शुल्क जमा कर पत्रावले प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय से संबद्धता विस्तारण, नए विषय और पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 6 नवंबर 2025 से 17 अप्रैल 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में कॉलेजों ने आवेदन नहीं किए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे कॉलेजों को ₹25,000 जुर्माना और ₹29,500 संबद्धता शुल्क जमा करने को कहा है। इसके बाद ही पत्रावली जमा करने पर विचार किया जाएगा। एक से शुरू होगा सीईई, 80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सेना भर्ती कार्यालय आगरा ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा यानी सीईई 2026 की तैयारी पूरी कर ली है। 1 जून से 12 जून के मध्य आगरा, अलीगढ़ सहित 4 शहरों में परीक्षा होगी। इसमें 80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऑनलाइन परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में शामिल होने का मौका मिलेगा। रैली आगरा में होगी। सेना भर्ती कार्यालय के दायरे में आगरा, मथुरा, अलीगढ़ सहित 12 जिले आते हैं। इस साल सामान्य प्रवेश परीक्षा 1 जून से शुरू होगी। ये परीक्षा 12 जून तक चलेगी। आगरा में 5, अलीगढ़ में 3, झांसी में 2 और मथुरा में 1 केंद्र बनाया गया है। ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। ऑनलाइन परीक्षा में सुरक्षा के अलग से इंतजाम किए जाएंगे और इस परीक्षा का परिणाम 3.5 से 4 महीने में घोषित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।

आज चलेगा जनगणना का विशेष अभियान। जनगणना का विशेष अभियान रविवार को चलाया जाएगा। डीएम ने बताया कि जिले को 23 जोन में बांटा गया है। 11,000 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को लगाया गया है। जन जन की गणना में 33 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बिना पंजीकरण नहीं होगा स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम का संचालन। जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें से एक निर्णय ये भी था कि जनपद में संचालित सभी स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, वेब पूल और जिम संचालकों को सभी का पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। इन सभी संचालकों को क्षेत्रीय खेल कार्यालय में 100 रूपए का फॉर्म खरीद कर आवश्यक दस्तावेज सहित जमा कराना होगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी चक्का जाम हड़ताल तीसरे दिन समाप्त हो गई। अब आगरा से फिर से एनसीआर के लिए गाड़ियां दौड़ेंगी। नौ जून को लगेगी डाक अदालत। डाक सेवाओं से संबंधित जन शिकायतों के निस्तारण के लिए 9 जून को सुबह 11:30 बजे प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाक परिसर में डाक अदालत आयोजित की जाएगी। हीट वेव अब 29 तक चलेगी, अंधड़ संग गरजेगी बिजली। ताजनगरी में आने वाले दिनों मौसम के अलग रंग दिखाई देंगे। गर्मी में कमी नहीं आएगी, रातें भी गर्म रहेंगी, साथ में हीट वेव भी चलेगी और धूल भरे अंधड़ भी आएंगे। बिजली गरजने और गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव का अलर्ट अब 29 मई तक के लिए है, जबकि 26 मई तक वार्म नाइट यानी गर्म रात का भी अलर्ट जारी किया गया है। इन दिनों 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और धूल भरी हवाएं भी चलेंगी। साथियों, खबरें भी अभी बाकी हैं और आपसे एक और चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आपको देंगे हम बाकी की सूचनाएं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जी हां साथियों, ये बहुत अच्छा मौका है, आप और हम सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और 90 वर्ष पूर्ण होने पर आज आयोजित हो रही है संगीत संध्या। जी हां, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में

प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी आगरा द्वारा रविवार को सेंट जॉर्जेस कॉलेज बालूगंज में सुगम संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शनिवार को विभव नगर स्थित आकाशवाणी केंद्र पर पोस्टर विमोचन समारोह आयोजित हुआ। संगीत संध्या में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गजल गायक सुधीर नारायण अपनी प्रस्तुति देंगे और शुभ्रा तलेगांवकर गीत एवं भजन प्रस्तुत करेंगी। वहीं सलीम हसन चिश्ती कव्वाली और सूफियाना कलाम पेश करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित होगा बुढ़िया का ताल। आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर एतमादपुर स्थित बुढ़िया का ताल को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इसके लिए पर्यटन विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। बुढ़िया का ताल आगरा इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित होता है तो पर्यटकों को शहर के बाहर हाईवे किनारे एक नया पर्यटन स्थल मिलेगा। अभी बदहाल पड़े ताल में पर्यटक नहीं पहुंचते हैं। अकबर के दरबारी एतवाद खान द्वारा बनवाया गया 430 वर्ष से अधिक पुराना स्मारक ASI द्वारा संरक्षित है। आगरा व अलीगढ़ में होगी 3 और 4 जून को TGT परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बनाए गए आगरा मथुरा अलीगढ़ हाथरस समेत कुल 36 जिलों की सूचना व परीक्षा की समय सारणी वेबसाइट पर जारी कर दी है। प्रत्येक मंडल मुख्यालय सहित मंडल के एक एक अन्य जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। कुल 36 जिलों के 614 केंद्रों पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 8,68,531 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। बताना चाहेंगे कि नीट अभ्यर्थियों की फीस वापसी शुरू हो चुकी है। नीट यानी UG 2026 की परीक्षा रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने छात्रों की आवेदन फीस वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीकरण पोर्टल पर नई सुविधा के तहत उम्मीदवार अपने बैंक खातों की जानकारी दे सकेंगे।

फ्यूजन प्रीमियर लीग का कल से होगा आगाज। ताजनगरी में पहली बार आयोजित हो रही आगरा हॉकी मास्टर फ्यूजन प्रीमियर लीग 25 से 29 मई तक एकलव्य स्टेडियम में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में दूधिया रोशनी में प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। 6 फ्रेंचाइजी टीमों के बीच होने वाली लीग की तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजक ने बताया कि यह आगरा का पहला हॉकी टूर्नामेंट होगा जो पूरी तरह फ्लड लाइट में खेला जाएगा। प्रत्येक गोल पर बॉनफायर जलाकर जश्न मनाया जाएगा। आज खुलेगा उप निबंधक कार्यालय तृतीय। तहसील सदर स्थित उप निबंधक कार्यालय तृतीय रविवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेगा। वहीं दस्तावेज लेखकों और अधिवक्ताओं ने रविवार को कार्यालय खुलने का विरोध भी किया है। बैनामा करवाने के लिए वे लोग नहीं पहुंचेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। ये थी हमारे आसपास की आज की खबरें और आइए अब आपको सुनवाते हैं आपके मनोरंजन के लिए एक गीत।

कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और साथियों, अब हम आपको जानकारी देंगे गुमशुदा व्यक्तियों की। ये जानकारी हमें पहली सूचना जो मिली है वो मिली है थाना प्रभारी थाना सदर बाजार आगरा से। ये सूचना है कुमारी शिवानी के विषय में। शिवानी पुत्री रामवीर सिंह निवासी ताल फिरोज खां थाना सदर बाजार दिनांक 9 अप्रैल 2026 से लापता है। शिवानी की उम्र लगभग 18 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 1 इंच है। घटना के दिन इन्होंने लाल रंग का सलवार सूट पहना हुआ है। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको मिले तो कृपया थाना प्रभारी थाना सदर जनपद आगरा को सूचित करें। थाना सदर बाजार से ही प्राप्त ये अगली सूचना है जो है अंकित कुमार के विषय में। अंकित कुमार पुत्र पुष्कर राम निवासी राजपुर चुंगी केदारनगर आगरा दिनांक 17 मार्च 2026 से लापता हैं। अंकित की उम्र लगभग 23 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 6 इंच रंग गेहुआ और शरीर लंबा है। घटना के दिन इन्होंने जीन्स पैंट पहनी हुई है। इनके बारे में कोई जानकारी यदि आपको मिले तो कृपया थाना प्रभारी थाना सदर को सूचित करें। थाना सदर बाजार से ही प्राप्त अगली सूचना है जो है विनोद कुमार के विषय में। विनोद कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी वेदनगर कॉलोनी देवरी रोड सदर बाजार आगरा दिनांक 12 मार्च 2026 से लापता है। विनोद कुमार की उम्र लगभग 43 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 6 इंच रंग गेहुआ और रंग सांवला है। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको प्राप्त हो तो कृपया थाना सदर बाजार को सूचित करें। और ये एक अन्य सूचना है, ये हमें प्राप्त हुई है थाना

हमारी थाना बरहन आगरा से ये सूचना है कुमारी रागिनी के विषय में। रागिनी पुत्री उदयवीर निवासी ग्राम गड़ी भंडार थाना बरहन दिनांक 12 फरवरी 2026 की सुबह से लापता है। रागिनी की उम्र लगभग 16 वर्ष है। इनका कद 4 फुट है। इन्होंने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है जो कि नीले रंग की जीन्स है और पैरों में चप्पल पहनी हुई है। इनके बारे में कोई सूचना देने के लिए आप थाना प्रभारी थाना बरहन से को सूचित कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। और साथियों अब चलते चलते आपसे एक चर्चा और कर लेते हैं, वो है राष्ट्रमंडल दिवस की यानी कॉमनवेल्थ डे। इस विषय पर आपको कुछ जानकारी देते हैं, चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे, राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष उन देशों के बीच एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल दुनिया के विभिन्न देशों का एक ऐसा समूह है जो लोकतंत्र, शांति, समानता और विकास जैसे मूल्यों में विश्वास रखता है। इस संगठन में वे देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश शासन का हिस्सा रहे थे या जिनका ऐतिहासिक संबंध ब्रिटेन से रहा है। आज राष्ट्रमंडल में 50 से अधिक देश शामिल हैं जिनमें भारत भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इन देशों की भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं भले ही अलग हों, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, विश्व में शांति, सहयोग और प्रगति को बढ़ावा देना। राष्ट्रमंडल दिवस हमें ये सिखाता है कि जब देश मिलकर कार्य करते हैं तो वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, खेल, तकनीक और व्यापार जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग देखने को मिलता है। विशेष रूप से युवाओं के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी इस संगठन द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और राष्ट्रमंडल का सक्रिय सदस्य होने के नाते विश्व शांति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश हमेशा वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है इस भावना के साथ आगे बढ़ता रहा है। आज के समय में जब दुनिया कई समस्याओं का सामना कर रही है, तब राष्ट्रमंडल जैसे संगठन देशों को एक साथ लाकर सहयोग और सद्भाव का संदेश देते हैं। ये दिवस हमें एकता, सम्मान और पारस्परिक समझ का महत्व याद दिलाता है। तो साथियों, ये थी चर्चा और सुनते हैं एक गीत।

समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। अब हमें कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।

0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
5: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा

0: पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. स्वास्थ्य साथी बेनिफिशियरीज टू बी इंक्लूड

0: आज दिल्ली समेत शिमाली बस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादले ख्याल करेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा, अहम टेक्नोलॉजीज, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा तवानाई की फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत बहुत से शोबों में दोतरफा तआवुन में ठोस पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत और अमरीकी आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने अमन कोशिशों के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इरादा किया और मुजाकिरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजियात के पुरअमन हल की अपील को दोहराया। वजीर खारजा जनाब रूबियो ने मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर अमरीकी मौकफ साझा किए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को मुनक़िद होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए क्वाड के विजन को मद्देनजर रखते हुए वज़राए खारजा तरजीह शोबों में क्वाड के ताउन को आगे बढ़ाने के बारे में ख्यालात का तबादला करेंगे। क्वाड के जारी इकदाम पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ्त और बाहमी तौर पर मुतालिक दीगर बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर करेंगे। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से भारतीय कारोबारी रहनुमाओं के एक वफ्द के साथ कनाडा के 3 रोजा दौरे पर होंगे। वजारत तिजारत ने मुत्तला किया है कि तिजारत, सरमायाकारी और भारत कनाडा जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA के मुजाकिरात को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में दो तरफा मसरूफियात में हिस्सा लेंगे, जो इस दौरे का मरकजी महवर होगा। इस साल मार्च में कनाडा के वजीर आजम मार्क कानी के दौरे भारत के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर दस्तखत किए गए थे। मुजाकिरात का पहला दौर मार्च में वर्चुअल तरीके से मुनक्किद किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को खत्म हुआ था। इस दौरे के दौरान ओटावा में मुजाकिरात के अगले दौर का इनेकाद किया जाएगा। दोनों फरीक इस साल के आखिर तक एक तवाजुन और बाहमी तौर पर फायदेमंद CEPA को जल्द हतमी शक्ल देने की समत में काम कर रहे हैं, जिसका मुश्तरक मकसद 2030 तक दो तरफा तिजारत को 70 अरब कैनेडियाई डॉलर तक पहुंचाना है। मगरबी बंगाल में इस साल जुलाई से आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज होगा। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता में सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा के साथ वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत पहले से मौजूद मुस्तफिदीन को आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में एक मफाहमत नामे पर जून में नई दिल्ली में दस्तखत होंगे। जनाब अधिकारी ने कहा कि मगरबी बंगाल में PM जन औषधि केंद्रों की तादाद 117 से बढ़ाकर 469 करने के सिलसिले में मरकज को एक तजवीज भेजी गई है। वजीर आला ने यह भी कहा कि अलीपुर द्वार, कालिम्पोंग और जुनूबी दिनाजपुर में नए मेडिकल कॉलेजेस और शिमाली बंगाल के लिए एक नए एम्स के सिलसिले में तजावीज भी मरकजी हुकूमत को भेजी जा चुकी है। महाराष्ट्र में TCS फैसिलिटी के खिलाफ मुबैना तौर पर जिंसी ज्यादती और मजहब तब्दील कराने की कोशिश करने के मामले में नासिक की एक अदालत में 1500 सफात पर मुश्तमिल एक फर्द जुर्म दायर की गई है। SIT के चीफ संदीप मिटके के मुताबिक ये फर्द जुर्म 4 मुलजिमान दैनिक दानिश शेख, निदा खान, मतीन पटेल और तौसीफ अत्तार के खिलाफ कल दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुतालिक 7 से 8 अफराद के खिलाफ इजाफी फर्द जुर्म

0: अगले 3 से 4 रोज के दौरान दायर की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जाने सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ सेहत और तिब्बी पेशेवर अफराद की तरबियत यकसां तौर पर अहम है। उन्होंने ये बयानात कल नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टरों को हिफ्जाने सेहत के निजाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देनी चाहिए। वहीं बुनियादी ढांचे और दीगर सहूलियात को मुल्क के लिए हार्डवेयर के तौर पर काम करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क के उभरते हुए तिब के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को एजाज देकर भारत अपने हिफ्जाने सेहत के इको निजाम के मुस्तकबिल को एक शक्ल दे रहा है। मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड के बारे में बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने एक मजबूत ब्रांड तामीर किया है जो कि हिफ्जाने सेहत में पेशेवराना सलाहियत मफाहमत और साख को पेश किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरीज की देखभाल में और ज्यादा सहूलियात पैदा करने और उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए 11 नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाय कर दिया है। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई भी फर्दो फरीक तंजीम या कोई इदारा अगले माह की 21 तारीख तक सलाह मशवरे के लिए जाब्तों के मसौदे पर अपने एतराजात या तजावीज पेश कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG नरेगा 2005 की जगह ले ली है। इस कानून का मकसद एक माली साल में कानूनी रोजगार की जमानत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों के मसौदे सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वज़ह किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि उबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायम कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के जाब्ते, इंतजामी इखराजात के जाब्ते व शिकायत के इजाले के से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मसौदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। VBG-RAM-G Act 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुजाकिरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस मुआहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिद अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयान देने का इल्जाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वाशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नजदीक गोलियों के चलने की आवाज सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नजदीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ और हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमरीका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाकये के नजदीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाकये की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं।

0: जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार, जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने साबिका जाति बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणॉय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज दो मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच सहपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतालिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली NCR समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान RP सिंह के इस बयान को सफे अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथ ही मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र SIT ने नासिक TCS जिनसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्ज जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली, वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत के बोल इंदीवर ने लिखे हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है कुर्बानी।

कुर्बानी फिल्म का गीत भी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है सागर फिल्म से। गीत में आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

यह आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। अगले गीत में लता मंगेशकर का साथ देंगे अमित कुमार। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत आर डी बर्मन का और फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

लव स्टोरी फिल्म का गीत आपने सुना। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है जुर्म फिल्म से। गीत में आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की। इंदिवर के लिखे इस गीत को तरन्नुम में ढाला है राजेश रोशन ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है जूली फिल्म से। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

शराबी फिल्म के इस गीत के साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी आगरा है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से।

0: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
1: प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। मई के महीने में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बुंदेलखंड का बांदा लगातार देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक

0: दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, आगरा और जालौन जैसे जिलों में भी तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि साल दर साल जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। बांदा में ज्यादा तापमान उसकी भौगोलिक स्थितियों के कारण है।
1: तापमान बढ़ने की वजह से गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठंडी का मौसम जो है वो श्रिंक हो रहा है। बांदा जो या प्रदेश का पूरा ही दक्षिणी इलाका जो है वो फेवरेबल रीजन होता है ज्यादा तापमान के लिए। उसके कई सारे भौगोलिक कारण भी हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। बांदा जो है वो जलवायवी तौर पर भी सबसे गर्म रहने के लिए उसकी जलवायु भी फेवर करती है। लेकिन अगर इस साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि उत्तरी इलाके में ज्यादा तापमान होंगे, पूरे पूर्वांचल में ज्यादा तापमान होंगे, तो इसके लिए दो तीन फैक्टर होते हैं। जो ग्लोबल फोर्सिंग है या रिमोट फोर्सिंग हम बोलते हैं, वो इंसो होती है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
0: अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों का खास ध्यान रखना होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारी की है। अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के सीएमओ अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें।
2: हमारा जनपद गाजियाबाद में तीन बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं, तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम थे, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS और जिंक का टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब हैं और पानी पीने का साफ पेयजल और कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है।
0: बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है।
3: इस समय है कि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बढ़ने की ही संभावना है। मेरा सभी लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि जो विशेषकर समय जो होता है गर्मी का, वो अपना सुबह 9-10 बजे से लेकर जो शाम के 4-5 बजे तक रहता है, अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय अपने घरों से बाहर या अपने जो कार्यस्थल है उससे बाहर निकलें। और जब भी खुले में निकलें या कहीं भी जाएं तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट की या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना ध्यान जरूर रखें। अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें।
0: भीषण गर्मी के कारण इस बार प्रदेश में बिजली की मांग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। गर्मी में लोगों को परेशानी न हो इसे लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्नाव में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने सरैया, शुक्लागंज और गंगा घाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे हुए बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए हैं। यहाँ SDO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि लोड मैनेजमेंट और लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए पुराने ट्रांसफार्मरों को हटाकर उच्च क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। शहरों में गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या और कामकाज को प्रभावित किया है। खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर वर्ग या पशु, गर्मी का असर सब पर दिख रहा है। दोपहर में अधिक तापमान के कारण किसान खेतों में सुबह और शाम ही काम के लिए जा पा रहे हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को तेज धूप में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली के विशेष प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।
4: हीट वेव की दृष्टि से जनपद श्रावस्ती में सभी

0: अधिकतर जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है और नगर क्षेत्रों में गांव क्षेत्रों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है और नगर पालिका को बताया गया है कि जितने भी वाटर कूलर्स हैं वो ठीक चलते हैं और पोपियों के लिए तालाब के लिए भी पंचायत राज से कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था की।
1: गर्मी का असर केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि पशु पक्षी भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तेज धूप और जल स्रोतों के सूखने से पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, दूध देने वाले पशुओं के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए प्रदेश के चिड़ियाघरों लॉयन सफारी में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी क्षेत्र में फॉगर शॉवर से तापमान कम किया जा रहा है, भालू लेपर्ड हाउस में कूलर लगाए गए हैं तो हिरणों के तालाब ट्यूबवेल से भरे जा रहे हैं। गर्मी के कारण सफारी का समय भी बदलकर सुबह 6:30 बजे कर दिया गया है।
2: गर्मी और लू से बचाने के लिए जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं तो अंदर ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही धूप से बचाने के लिए सफारी क्षेत्र में प्लस जहां पे भी संभव होता है वहां पे छप्पर लगाए जाते हैं फूस के ताकि उनको बचाया जा सके। डियर एंटीलोप सफारी में है उनको पर्याप्त तालाब जो भी बने हुए हैं सफारी क्षेत्र के अंदर उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहे सुनिश्चित किया जाता है। तैयारियां की गई हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि वन्य जीवों को गर्मी और लू से बचाया जाए।
1: गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धर्मनगरी अयोध्या में राम भक्तों और भगवान दोनों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन मार्ग पर कैनोपी और टेंट लगाए गए हैं। जहां जहां नए दर्शन स्थल बनाए गए हैं वहां विशेष मैटिंग और कारपेट बिछाए गए हैं ताकि भक्तों के पैर गर्म जमीन से न जलें। दर्शन के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े हॉल तैयार किए गए हैं जहां बैठने, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
3: श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार जहाँ से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं उसके नजदीक एक ऐसा शेड निर्माण किया जिसको तीर्थयात्री सेवा केंद्र नाम दिया है। वहाँ पर छाया है, लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं नित्य उपयोग की वो उपलब्ध है, वहीं से व्हील चेयर मिलती है, वहीं से उनके पास आदि की व्यवस्था होती है, जल पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। वहां से हमारे भक्तगण निकलते हैं तो कैनोपी प्रारंभ हो जाती है, किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 कदम की बात छोड़ दें तो।
1: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभु शरण ने बताया कि धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध RO वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
4: जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडे पानी मिल सके। जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ठंडे जल रखवाया गया है। कई जगहों पे ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था है। उनके सर पे छाया रहे इसलिए धाम में हर जगह पे जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया गया है।
1: साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू मौसम में हो रहे बड़े बदलावों का न केवल बड़ा संकेत है बल्कि ये चेतावनी भी है कि हमें जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही बढ़ते तापमान और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
5: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
6: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 9:26 हुए।

प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मंजूषा, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ गीत पुरानी फिल्मों से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में।

आपने सुना छाया फिल्म का गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी सलील चौधरी ने। कार्यक्रम का अगला गीत सजा है आरडी बर्मन के संगीत से, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है बहारों के सपने और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

बाहरों के सपने, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम के अगले गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत सहर उद्यानवी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है इज्जत।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे छोटी सी मुलाकात फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही आज का गीत मंजिशा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हमारे आज के गायक कलाकार हैं पोप सिंह और साथी। सुनते हैं आपके द्वारा प्रस्तुत ब्रजलोक गीत। पहली प्रस्तुति के बोल हैं हे महादेव त्रिपुरारी।

तेरी नैया पार लगावेगा कन्हैया बंसीवारो। ये बोल थे जो अभी आप सुन रहे थे पोप सिंह और साथियों की आवाज में। इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 10 बज चुके हैं, समय हुआ है सदाबहार फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर सरिता का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ था ये गीत, जिसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कर्ज फिल्म के इस गीत को आवाजें दी थी मोहम्मद रफी और साथियों ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत में मोहम्मद रफी का साथ देंगी सुषमा श्रेष्ठा। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

कार्यक्रम सुरसरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। आशा भोसले की आवाज में आइए आप सुनते हैं अनजान का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है बप्पी लाहिड़ी ने और फिल्म का नाम है नमक हलाल।

अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को तरन्नुम में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आरडी बर्मन के संगीत से सजा है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसके बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने। सत्ती पे सत्ता फिल्म के इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार, आरडी बर्मन, भूपिंदर और सपन की।

किशोर कुमार, आरडी बर्मन, भूपिंदर और सपन के गाए सत्ती पे सत्ता फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरता अब समाप्त होता है। निगम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं गजेंद्र सिंह। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग अहीर भैरव

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे गजेंद्र सिंह से ख्याल गायन शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग अहीर भैरव। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बॉक्स नंबर 111
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया था फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम वन्य जीवों के बारे में जानें, इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जानें। तो आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उल्लेख किया है।
2: साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहां की धरती जीवंत तो हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहां आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी

0: खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसी ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
1: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग गुजरात राज्य से, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक, कच्छ ईस्ट डिवीजन, वन विभाग गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
2: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
1: गुजरात राज्य, इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
2: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
3: नमस्कार श्रोता मित्रों।
2: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र

0: फ्लेमिंगो भी गुलाबी है, लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है। इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है। कैसे? एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया, यहां पर शैलो वाटर तो है। शैलो वाटर की वजह से क्या होता है, एल्गे, क्रस्टेशियंस, डायटम्स, और ये उनकी मेन खुराक बनती है इन फ्लेमिंगोज की। जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है। जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी, वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है। तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है। तो आप देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो वही साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं।
1: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है, उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है। डॉक्टर जयपाल सिंह ये जो बताई फ्लेमिंगोस सुरखाप की संख्या, तो ये सुरखाप की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है?
2: जी, जैसे फ्लेमिंगो को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं, साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है।
1: तो श्रोताओ, फ्लेमिंगो सुरखाप के विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए।
2: जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
1: बिल्कुल, प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुरखाब फ्लैमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस के पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकल रहता है?
1: वैसे तो हम लोग हर 4 साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है। जैसे कि नड़ावेट विस्तार है, उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनकी भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं, जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे, और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडाबेट का उजागर

0: जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडा बेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का। तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
1: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोलें, शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर हैं तो क्यों हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या हैं आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक आ पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है। तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है, वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाए और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं, थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका, उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
1: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगो इसके अंडा कम होते जा रहे थे।
2: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए, सी शेप हम उसे डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
1: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूडा साइट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को यह भी बताए कि ये कूडा एक ऐसा एरिया है जहां पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है और उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है।
2: जी,
1: और इससे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंदगी का एक गीत भी आप बताइए।
2: छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,

0: श्रोता मित्र, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी, लाखा जी के बाराती और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल 4 पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं, और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है, और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड

0: पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है। वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घुराड़ है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
0: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए, तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वह हो हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं, कि जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है। और कुछ अन्य परिबल, बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके, वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है, तो वो भी एक उसका कारण होता है।
2: कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: श्रोता मित्र, हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराड की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
1: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराड है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड हैं ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बर्ड्स ऑफ सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया और यहां पर जो मादा घोराड़ हैं तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
0: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन सी सावचेतियां रखनी पड़ती है?
1: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है। इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट CZA की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है, और जो आर्टिफिशियली इंसिमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे फिजिबल होता है?
1: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराड़ है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
0: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई। डॉक्टर जयपाल सिंह साथ में बताए थे कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था, और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं।

0: इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग। तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में, जो भी विस्तार में, उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है, हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है। अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्ड करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्स सीटू भी चल रहा है। एक्स सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें,
1: बहुत खूब, बहुत
0: और
1: बढ़िया।
0: कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है, जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एसओपी भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको वह छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें। तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में, जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल है तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों वो सीधे वाइल्डिंग होंगे। पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में, उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास है वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े, जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे, तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया जंप स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घुराड़ के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन सी है?
0: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टेयर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टेयर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूअस पैच जो घास के हैं वो तैयार रहें। फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए, तो ये है। फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाए, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाए उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसी साल गुजरात के 5वें एक जो वेटलैंड है, जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लैमिंगो, सुरखाब, साथ में घोराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, तो साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई, उसके बारे में भी आप बताइए।
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज्यादा जो वेट

0: वेटलैंड्स हैं गुजरात में, हैं करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं, वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं। तो इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं, तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारीडंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छी संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल। तो उसको एक रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लैमिंगोस, फ्लैमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष शर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं देश गान।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देशकान। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकमंजरी। लोकमंजरी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुनीता धाकड़ की आवाज में लोकगीत। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोकमंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनीता धाकड़ के गाए कुछ लोकगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुनीता धाकड़ की आवाज में लोकगीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोकमंजरी यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम नए तराने का। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल की आवाजों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की। शब्द रचना है इरशाद कामिल की, संगीत रचना है ए आर रहमान की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में तमाशा फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: साथियों, अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम नए तराने में। साथियों, इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं गुरु रंधावा की आवाज में तुम्हारी सल्लू फिल्म का ये गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे गुरु रंधावा की आवाज में तुम्हारी सल्लू फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अरिजीत सिंह, प्रकृति कक्कर और अमाल मलिक की। शब्द रचना है कुमार की, संगीत रचना है अमाल मलिक की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, कबीर सिंह फिल्म से।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कबीर सिंह फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में लव आजकल फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है इरशाद कामिल की, संगीत रचना है प्रीतम की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में लव आजकल फिल्म का ये गीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओ, दोपहर के 1 बजने को है और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं।

0: and in government hospitals across Quetta. Chinese Ambassador to India Xu Feihong today expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for sending a condolence message following the mining incident in Shanxi province of China. The incident has so far claimed 82 lives, while 9 people are still missing. The Department of Consumer Affairs has expanded the role of government-approved test centers, or GATCs, to strengthen the system for checking weights and measures in the country. For this, the government has amended the Legal Metrology Rules 2013. The 6th day 79 World Health Assembly concluded in Geneva yesterday, during which member states adopted multiple resolutions to advance multilateral cooperation in safeguarding human health. The Assembly adopted more than 20 decisions and 13 resolutions on issues including stroke, tuberculosis, antimicrobial resistance, emergency care, hemophilia, precision medicine and radiation. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals in Mumbai at 3:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त गर्मी और बढ़ती हुई बिजली की मांग के दरमियान रियासत में बिला तातुल और मेयारी बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि हर सतह पर मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए ताकि आम लोगों, किसानों, ताजिरों और सनतों को बिजली के बुहरान का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि महकमा तवानाई को गर्मी के इस मुश्किल दौर में पूरी हसासियत और तंदही से काम करना चाहिए। आज वजीर तवानाई अरविंद कुमार शर्मा और रियासती वजीर अखिलेश सिंह राजपूत की मौजूदगी में वजीर आला महकमा तवानाई, पावर कारपोरेशन और तमाम डिस्कॉम के अफसरान के साथ बिजली की फराहमी के निजाम का जायजा ले रहे थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मेहनत और रोजगार महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों पर एक जायजा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम के बारे में बातचीत की, जो इस वक्त 20 इजला में चल रही है, और हिदायत दी कि इसे रियासत के तमाम 75 जिलों में नई दफात के साथ नाफिज किया जाए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि महसूलात के मामलात को तेजी के साथ शफाफ और मेयारी तरीके से निपटाने को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जमीन और रेवेन्यू से मुतालिक मामलात में गैर जरूरी ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। वजीर आला ने वाजह हिदायत दी कि मुकर्रा मुद्दत के बाद भी ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में मुतालिका अफसरान और अहलकारों की जवाबदेही तय करके जरूरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कल लखनऊ में रेवेन्यू अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात के निपटाने की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए वजीर आला ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी निजाम, जवाबदेही और बरवक्त काम के जरिए रेवेन्यू अदालतों को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में मौसम से मुतालिक इब्तदाई वार्निंग सिस्टम को ज्यादा दुरुस्त, तेज और अवाम पर मरकूज बनाने की हिदायत दी है। कल लखनऊ में रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक जायजा मीटिंग में वजीर आला ने कहा कि कुदरती आफात के दौरान बरवक्त और दुरुस्त मालूमात बहुत सी जानें बचा सकती है, इसलिए मौसम की पेशगोई और वार्निंग के निजाम को सिर्फ तकनीकी इंतजाम तक महदूद रखने के बजाय मुअसर तरीके से आखिरी फर्द तक पहुंचाने के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने गांव और हसास इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने, IVRS पंचायत सतह के लाउडस्पीकर्स, मकामी FM रेडियो, मोबाइल अलर्ट्स और सोशल मीडिया का वसी इस्तेमाल करने की हिदायत दी। रियासत के शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर AK शर्मा की हिदायत पर बिजली

0: महकमे में काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में मेरठ में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को महकमा जाती कामों में लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को भी अपने फराइज में संगीन लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया। सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स 2026 का इम्तिहान आज मुनक्किद किया जा रहा है। इस बार सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए मेरठ, कानपुर और भुवनेश्वर में नए इम्तिहान मरकज जोड़े गए हैं। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने आज मेरठ में इम्तिहान मरकज केवी डोगरा लाइन का मुआयना किया और बताया कि मेरठ में तमाम इम्तिहान मराकज पर सारे इंतजाम अच्छी तरह किए गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने यह भी कहा कि कमीशन का मकसद इम्तिहानी अमल को आसान, काबिल रसाई और मुअसर बनाना है। उन्होंने कहा कि नए मराकज के इजाफे से उम्मीदवारों को बेहतर सहूलियात मुयसर होंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के जरिए मुनक्किद मुंशी मौलवी सेकेंडरी और आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड इम्तहान 2026 के नतायज का कल ऐलान कर दिया गया। इस साल मदरसा बोर्ड के इम्तहान का नतीजा 88.26% रहा, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रियासत के तकरीबन तमाम अजला में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। बेशतर अजला में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज कर गया है। बांदा रियासत का गर्म तरीन जिला बना हुआ है। बांदा के एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि इंतजामिया ने गर्मी और बचाव के लिए वसी इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्नू का पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडल।

जय हिंद। प्यारे बच्चों, दिन रविवार हो तो आपको इंतजार रहता है अपने पसंदीदा कार्यक्रम बालमंडल का। आज बालमंडल में आपके साथ है आपकी ललित दीदी। बच्चों, खेलना किसे पसंद नहीं होता? अब देखिए, खेल का नाम आते ही हर बच्चे के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। तो आपके चेहरे की खुशी को इसी तरह बनाए रखते हैं और आपसे बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम की। भाई, खेलों की ही बात करते हैं जिससे आपके चेहरे पर प्रसन्नता आए, हम बात भी वही करेंगे। बच्चों, राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य से हुई थी। पहले जिन देशों पर ब्रिटेन का शासन था, वे समय के साथ स्वतंत्र होते गए। स्वतंत्रता के बाद भी इन देशों ने आपसी सहयोग और अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक संगठन बनाया और इस संगठन को कॉमनवेल्थ कहा गया। आज इस संगठन में बहुत से देश शामिल हैं। बच्चों, कॉमनवेल्थ का उद्देश्य राजनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि शिक्षा, खेल, संस्कृति, व्यापार और मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सभी सदस्य देश जो हैं वो भाग लेते हैं। भारत भी 1947 में स्वतंत्र होने के बाद 1949 में कॉमनवेल्थ का सदस्य बना और आज भी बच्चों इसमें ये अपनी सक्रिय भूमिका जो है वो निभा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम हमें आपसी सम्मान

सहयोग, एकता, शांति और सहयोग की भावना अपनाने की सीख देते हैं। बच्चों, खेल में जीतने की भावना हमें हर मैदान फतेह करने की भी सीख देती है।

बच्चों, हमें उम्मीद है कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी जिस क्षेत्र में भी कदम आगे बढ़ाएंगे उसे जीते बिना सुकून से नहीं बैठेंगे। बच्चों, अभी हमें आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम।

0: बच्चों, क्या कभी आपने ऐसे जंगली जानवर के बारे में सुना है जिसकी पहचान उसके सुंदर सुंदर घुमावदार सींगों से होती हो? जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं मारखोर की, जो दुनिया के सबसे आकर्षक यानी बहुत ही सुंदर लगने वाले जंगली बकरों में से एक माना जाता है। मारखोर मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी सबसे खास जो पहचान होती है वो होती है इसके लंबे और सर्पिल आकार के यानी सांप के आकार के इसके सींग होते हैं, जो इसे सबसे अलग और एक अनोखा जीव बनाते हैं। हर वर्ष आज ही के दिन मारखोर दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना है और साथ ही इस दुर्लभ जीव को बचाने के लिए भी प्रेरित करना है। मारखोर को पहाड़ों का बेहतरीन पर्वतारोही कहा जाता है, यानी पर्वतों पर चढ़ने वाला ये बहुत ही अच्छा जानवर है। ये खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से चढ़ जाता है। अब देखिए ना, कितना मुश्किल होता है खड़ी चट्टानों पर चढ़ना, और इसके लिए खड़ी चट्टानों पर चढ़ना बहुत ही आसान होता है। आज के समय में वन्य जीव संरक्षण बहुत जरूरी है। यदि हम प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत प्राणियों को देख पाएंगी। बच्चों, यदि हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इतने दुर्लभ प्राणियों को देखने से वंचित रह जाएंगी, वो देख ही नहीं पाएंगी इनको। इसलिए इनकी सुरक्षा हमारी और आपकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। इसलिए जरूरी है कि प्रकृति और वन्य जीवों की सुरक्षा में हम सब अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। वैसे पशु पक्षी सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वे तोता हो, मैना हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, खरगोश हो, भाई कोई भी हो, जानवर सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, आज भी हम आपको सुनवाते हैं मोर और कोयल की कहानी, और कहानी सुना रही है आपकी प्रगति दीदी।
1: बच्चों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं जंगल में रहने वाले उस कौवे की, जो ना तो अपने रंग रूप से संतुष्ट था और ना ही अपनी बिरादरी से, क्योंकि वह मोर जैसा सुंदर बनना चाहता था। रूप रंग की बुराई कर अपनी किस्मत को कोसने वाला कौवा हमेशा यही सोचता रहता कि उसने इस धरती पर जन्म क्यों लिया। उसके साथी कौवे उसे हमेशा समझाते कि तुमको जैसा रंग रूप मिला है उसके साथ संतुष्ट रहो, खुश रहो, पर वो कौवा कभी किसी की बात न मानता और हमेशा अपने साथियों से लड़ता ही रहता। एक दिन की बात है, उस कौवे को एक स्थान पर कुछ मोर के पंख पड़े हुए दिखाई दिए। उसने उन सारे पंखों को उठाकर अपनी पूंछ में बांध लिया और सोचने लगा कि अब तो मैं मोर बन गया हूँ और अब मैं कौओं की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में शामिल हो जाऊंगा। और ये सोचकर वो तुरंत ही अपने समूह के सरदार के पास गया और सरदार से अकड़ कर बोला, सरदार, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अब मोर बन गया।

हूँ। इसलिए आपको बताने आया हूँ कि कौओं की बिरादरी छोड़कर मैं मोरों की बिरादरी में जा रहा हूँ। कौओं का सरदार उसकी इस गुस्ताखी को सहन नहीं कर पाया, पर समय की नजाकत देखते हुए वो कुछ ना बोला और उस कौए को जाता हुआ देखता रहा। अब वो कौआ अपने घमंड में चूर मोरों के पास पहुंचा और उनसे ये कहने लगा

0: उसे अपनी बिरादरी में शामिल होने के लिए जरूर बुलाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। मोरों ने जब उसे मोर पंख लगाकर अपनी पूंछ में बांधकर घूमते हुए देखा तो उस पर खूब हंसे और उन्होंने कहा कि अभी इस कौवे का मोर बनने का भूत उतारते हैं। इसके बाद ही उन्होंने मिलकर उस कौवे की जमकर धुनाई की। कौवा बड़ी मुश्किल में जान बचाकर भागा और अपने सरदार के पास पहुंचा। अपने सरदार से बोला, सरदार सरदार, मोरों ने मुझे आज बहुत मारा है, अब मैं उनके बीच कभी नहीं जाऊंगा, मैं अपनी यही बिरादरी में रहूंगा। कौवे के सरदार को उसकी वो अकड़ याद थी। वो सोचने लगा कि तू उस दिन तो बहुत अकड़ रहा था, अब मैं तेरी अकड़ उतारता हूँ और तुझे सबक भी सिखाता हूँ। उसने अपने कुछ साथियों को बुलाया और सबने मिलकर कौवे को खूब मरम्मत की, उसे अतमरा कर दिया। कौवे का सरदार बोला, तुम जैसे कौवे की हमारे समूह को कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाओ और कभी भी लौट कर मत आना, अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारा कौवा ना मोर की बिरादरी में शामिल हो पाया और ना ही अपनी बिरादरी में, मरम्मत हुई वो अलग। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमने जैसे रंग रूप के साथ जन्म लिया है, जिस परिवार और परिवेश में जन्म लिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और कभी भी दूसरों को देखकर हमें अपने मन में ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। जैसा कि कौवा मोरों के प्रति रखता था, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी अपनी प्रगति दीदी से कहानी मोर और कोयल की। बच्चों, आपको भी अपने जीवन में कभी भी किसी से कोई ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, है ना? क्योंकि जलन की भावना रखना यानी हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। और बच्चों, आजकल तो भाई आपकी छुट्टी हो गई होगी और छुट्टियां होते ही बस घूमने की तैयारी सभी लोग करने लगते हैं। कोई पहाड़ों पर जाता है तो कोई नानी के घर, कोई दादी के पास। बच्चों, घूमने तो जाइए लेकिन दादी नानी को परेशान मत करिएगा, क्योंकि घूमने जाना तो भाई अच्छी बात है, साल भर बच्चे पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और जब इतनी मेहनत करते हैं तो भाई एक साल में एक बार घूमने जाना तो बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी को परेशान मत करिएगा। यदि वो किसी बात पर आपसे रूठ भी जाती हैं तो उन्हें प्यार से मना लीजिएगा, कुछ इस तरह से गुनगुना कर।

बच्चों, हमने आपसे मोर, कोयल और मारखोर जैसे पक्षी और जानवरों की बातें तो कर ली, मगर प्यारी सी गिलहरी तो रह गई। तो बच्चों, आइए सुनते हैं कि ये गिलहरी क्या कह रही है।

दे।

बंदर उतर उतर। बच्चों, बहुत सारी जानवरों की बातें हो गई, पक्षियों की बातें हो गई और घूमने जाने की भी बात हो गई, दादी नानी की भी बात हो गई। बच्चों, लेकिन किताबों की बात तो रह गई। अब आप सोचेंगे कि ललित दीदी अभी तो छुट्टियां हुई हैं, फिर से किताबों की बात करने लगी। देखिए, किताबों की बात तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबें जो हैं वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें हमें बिना कहे जाए, कहीं भी बिना जाए, हमें पूरी दुनिया की क्या करती हैं, सैर करा देती हैं। कभी हम राजा रानी की कहानियों में पहुंच जाते हैं, तो कभी अंतरिक्ष और विज्ञान की अद्भुत दुनिया में। बच्चों, आज एक राज की बात बताती हूँ आपको कि हम जब छोटे थे तब पता क्या करते थे कि बड़ी बहन हमारी बैठ जाती थी बीच में और बाकी सब लोग जो थे अगल बगल बैठ जाया करते थे और वो कहानी सुनाया करती थी और हम सब लोग बड़े मज़े से सुना करते थे। सच में बच्चों, वो दिन बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि कहानी सुनना, कहानी पढ़ना, ये चीज़ें हमारे अंदर जो है वो पढ़ने की आदत को डेवलप करती हैं। यानी हमारे लिखना पढ़ना ये सारी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो किताबें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि वे हमारी सोच और भाषा और साथ ही साथ बच्चों हमारी कल्पना शक्ति, इसको भी मजबूत करती हैं। जो बच्चे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं उनकी बोलने और लिखने की कला बेहतर होती जाती है। अब यदि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, एक साथ यदि आप पढ़ने बैठ जाएंगे, भाई ये बात तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी लागू होती है कि यदि आपके एग्ज़ाम्स होंगे और आप साल भर पढ़ेंगे नहीं और फिर एकदम से एग्ज़ाम्स आए और फिर मम्मी कह रही हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब कैसे आपको याद होगा? तो नंबर अच्छे आ ही नहीं सकते। इसलिए कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी है ना आपने, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत होशियार होंगे। मोबाइल

और टीवी से थोड़ी देर दूर रहकर अगर हम रोज 20 मिनट भी किताबों को दें तो हमें नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि आजकल तो भाई छुट्टी हो गई तो या तो सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं या फिर वो हाथ में मम्मी से मोबाइल ले लेते हैं। अब मम्मी जब तक काम में लगी हैं तब तक बच्चे मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। बच्चों ये आदत गलत होती है। उसका भी एक भली छुट्टियां हो गई हैं लेकिन उसका एक समय निर्धारित होना चाहिए, है ना, कि भाई इतनी देर आपको मोबाइल देखना है या इतनी देर आपको टीवी देखना है। उसके लिए निश्चित रूप से आपका समय निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि आप घंटों टीवी के आगे बैठे हुए हैं। अब भाई देखिए ज़्यादा देर टीवी देखेंगे या ज़्यादा देर मोबाइल देखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी आँखें भी खराब हो जाएंगी, है ना, और फिर मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे। तो आप तो नहीं चाहेंगे ये कि आपकी आँखों पर चश्मा लग जाए, तो इसलिए थोड़ा सा आप मोबाइल और टीवी से दूर रहिएगा। उसकी जगह एक काम कर सकते हैं भाई, देखिए इंडोर गेम खेल सकते हैं। बहुत सारे गेम्स होते हैं जो घर पे बैठे बैठे, क्योंकि गर्मी है हम तो ये भी नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाहर चले जाओ खेलने और बाहर खेलते रहो धूप में, फिर धूप लग जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए घर में ही इंडोर गेम खेलिए। कहानी की किताबें तो भाई हमें हंसाती भी हैं और प्रेरणादायक किताबें हमें आगे बढ़ने की सीख भी देती हैं। ज्ञानवर्धक पुस्तकें हमें समझदार बनाती हैं। बच्चों पढ़ोगे लिखोगे तभी तो अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करोगे।

बच्चों, अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपकी ललित दीदी आपसे विदा लेती है। जय हिंद।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की आवाज में गजलें। तो आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं मेहंदी हसन की आवाज में गजलें। आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मेहंदी हसन की आवाज में गजलें। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये

आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर दोपहर के 2 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: BJP candidate Devangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को

नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी @90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने

0: इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश

0: मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के अतिथि। तो आइए सुनते हैं आज के अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत

0: कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के अतिथि। तो आइए सुनते हैं आज के अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर त्रिमोहन तरल से श्री नीरज जैन की ये बातचीत।
2: आज के अतिथि मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी भेंट अपने अपने विषय के दिग्गज विशेषज्ञों से करवाते रहते हैं और आज इसी क्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर त्रिमोहन शाक्य तरल जी को। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हालांकि तरल जी अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, आगरा कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू पर आपका समान अधिकार है और हिंदी की कई विधाओं पर आपने खूब लिखा है, तबीयत से लिखा है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, गजल हो, दोहे, मुक्तक, बहुत कुछ लिखा है आपने। तो आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो डॉक्टर तरल जी, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
3: बहुत धन्यवाद।
2: तो तरल जी, हमारा पहला प्रश्न यही है कि आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, वहां से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो लेकिन आप हिंदी में आपका पूरा पूरा अधिकार है, तो ऐसा कैसे हुआ?
3: अंग्रेजी में तो मैं बहुत बाद में आया
2: जी।
3: कविता का लेखन तो मेरा किशोर अवस्था में आरंभ हो गया था
2: जी।
3: मैं साइंस का विद्यार्थी था। इंटरमीडिएट साइंस करने के बाद में वायुसेना में तकनीकी विभाग में सिलेक्शन हो गया तो मैं एयरफोर्स में चला गया और पहला गीत मैंने तब लिखा जब मैं 18 वर्ष का था और घर से मद्रास, उस समय जो आजकल चेन्नई है
2: जी,
3: वहाँ एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरम में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। डेढ़ ही महीना हुआ था गए हुए, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जो डिसिप्लिन के नाम पर, अनुशासन के नाम पर जो होता है, वही कुछ हमारे साथ हुआ। उन्होंने मुझे माँ की मृत्यु पर भी छुट्टी नहीं दी, आने नहीं दिया
2: जी। जी,
3: 10 दिन की छुट्टी मैंने मांगी थी, उन्होंने तमाम बहाने बनाए। मैं भी जिद्दी था, मैंने 10 दिन क्लास अटेंड किए, न पीटी गया, न परेड गया, ट्रेनिंग का कोई हिस्सा अटेंड नहीं किया
2: जी।
3: और जो हमारा निवास होता है जिसे बिलट कहते हैं, वहीं पड़ा रहा। उसी दुख की घड़ी में माँ की स्मृति में एक गीत मैंने पहली बार, वो प्रस्फुटित हुआ
2: जी।
3: जैसे अनायास कविता कहते हैं, वो पहला गीत है मेरे जीवन का जब मैं 18 साल का था और उसमें सब प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी का मेरे सामने था ही नहीं
2: जी।
3: मैं तो इंटरमीडिएट साइंस से करके
2: बस केवल भावों का प्रस्फुटन होना था,
3: तो वो हुआ। और वो उसे मात्राओं का, छंद शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था। उसके बाद भी आप आश्चर्य करेंगे, ये जो मेरा गीत संग्रह है इसमें वो संकलित है गीत
2: जी,
3: और किसी विशेषज्ञ में उसमें कोई मात्रा की गलती नहीं निकाल पाई।
2: क्या बात,
3: ये कुछ नैसर्गिक रूप से हुआ
2: जी। जी जी जी जी।
3: तो उस समय मुझे लगा, उसको गीत के बाद वो पड़ा रहा गीत वर्षों तक
2: जी।
3: मैंने ट्रेनिंग पूरी की, उसके बाद सौभाग्य से मेरी पहली पोस्टिंग आगरा में ही हुई
2: जी,
3: जबकि ये मेरे लिए नियरेस्ट एयरफोर्स स्टेशन है, नियम से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किस्मत जोर मार गई, नियम पीछे रह गया और मैं यहाँ आ गया। पहली पोस्टिंग का मैंने फायदा उठाया, मैंने अपनी शिक्षा पुनः आरंभ की
2: जी,
3: जो अधूरी रह गई। मैंने बीए किया, फिर एमए इंग्लिश में किया
2: जी,
3: और यहाँ आरबीएस कॉलेज में डॉक्टर आरपी तिवारी जैसे बहुत बड़े विद्वान गुरु का आशीर्वाद मिला। उनके शिक्षण में रहकर मैंने एमए अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में किया, आरबीएस में पहला स्थान था। उन्होंने फिर मुझे रजिस्ट्रेशन करा के पीएचडी करा दी
2: जी।
3: और इस तरह में फिर वो अंग्रेजी साहित्य की तरफ मुड़ा
2: जी। जी,
3: लेकिन अंग्रेजी साहित्य में जब मैं कर रहा था उस समय भी, वो गुरु हमारे ऐसे हैं कि वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के, और उर्दू के भी, तीनों के प्रकांड विद्वान थे।
2: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: डॉक्टर रामविलास शर्मा जो विश्व स्तर के विद्वान हैं, उनके शिष्य थे वो
2: जी।
3: तो मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा के शिष्य का शिष्य हूँ।
2: क्या बात है, क्या
3: एक वो रिश्ता है। उनका एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, आपके प्रश्न के जवाब में कह रहा हूँ। नंद दुलारी वाजपेयी उनके बहुत परम मित्र थे, जो हिंदी के प्रोफेसर थे बीएचयू में
2: जी।
3: वो जब मिलते थे तो उन्होंने कहा रामविलास शर्मा से कि तुम हिंदी में लिखा करते थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर कहाँ हो गए हो, अंग्रेजी में तो तुमने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, हिंदी में ज्यादा लिखा। तो रामविलास शर्मा ये कहा करते थे कि देखिए वाजपेयी जी, अंग्रेजी तो हमने अच्छी तरह से रोजी रोटी कमाने के लिए सीखी है
2: जी। जी जी।
3: और अंग्रेजों को ये बताने के लिए सीखी है कि हम तुम्हारी भाषा तुमसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
2: जी,
3: सेवा तो हम मातृभाषा की ही करेंगे।
2: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब।
3: तो ये गुरुवचन उनका
2: जी
3: मुझे आज तक याद है। मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा तो नहीं हो सकता उनके श्री चरणों का
2: नहीं, लेकिन आपने उस गुरुवचन को अपने जीवन में उतारा है।
3: वो एक प्रेरणा का स्रोत बना
2: जी।
3: और चूंकि पहले ही गीत लिखने लगा था एयरफोर्स में, उसके बाद एयरफोर्स में रह के ही।
2: तो तरल जी, क्या

0: आपको अपना वो पहला गीत याद है जो आपके संग्रह में संकलित है?
1: जी वो इतने हैं याद तो नहीं, लेकिन इसमें पढ़ सकता हूँ अगर आप कहें
0: हाँ
1: तो।
0: बिल्कुल, आप हमारे श्रोताओं को अपना वो गीत जो आपने पहली बार लिखा था उसको गुनगुना कर सुनाइए।
1: तो वो माँ की याद में है।
0: जी
1: अब देखिए, ये उस समय 18.5 साल की उम्र में लिखा था, और आप ये देखिए इसमें देशज शब्दों का जो
0: जी जी जी जी
1: प्रयोग है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस
0: स्वाभाविक
1: स्टेज
0: है,
1: पे भी।
0: स्वाभाविक बात है।
1: इस रचना को ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा या परिवेश को समझने वाला व्यक्ति ही
0: बिल्कुल
1: अप्रिशिएट कर सकता है, समझ सकता है। तो देखिएगा कि अंधेरी, तीन इसमें चित्र हैं और तीन बड़े बड़े प्रतीकों से मैंने बिंब बनाए हैं कि अंधेरी कोठरी के एक तरफ कोने में पड़ी है उदास व्यस्त आंसू बिना रोने में। अंधेरी कोठरी के एक तरफ कोने में पड़ी है उदास व्यस्त आंसू बिना रोने में। बापू ने संवारी नहीं, आधी टूटी आधी सही, आज भी बुलाए रही अम्मा तुम्हें वही तुम्हारी वाली खटिया।
0: क्या बात है।
1: एक चित्र। दूसरा देखें कि बिना धोए आज तक पड़ी है तुम्हारे बिना। मैं कोई व्याख्या नहीं दे रहा हूं, आप अपने आप पहुंच जाएंगे वहां तक। बिना धोए आज तक पड़ी है तुम्हारे बिना, चमकहीन हो गई दोहनी संवारे बिना।
0: चमकहीन हो गई
1: दोहनी
0: दोहनी
1: मिट्टी का वो
0: तुम्हारे बिना।
1: पात्र होता था जिसमें भैंस को
0: जी जी जी
1: दूध
0: जी
1: निकाला जाता था।
0: काढ़ा जाता है, भैंस काढ़ी जाती है।
1: तो बिना धोए आज तक पड़ी है तुम्हारे बिना, चमकीन हो गई दोहनी संवारे बिना। ढक्कन बगैर कहीं पड़ी है अनाथ पड़ी, ढक्कन बगैर कहीं पड़ी है अनाथ बड़ी, कुंभकार की कला दिखा रही पड़ी पड़ी, नैनी की मिटकिया, जिसमें वो नैनी बनाया करती
0: क्या
1: थी
0: बात है, क्या बात है।
1: और उसी में से नैनी हम लोगों को खिलाया करती थी। तो ढक्कन बगैर कहीं पड़ी है अनाथ बड़ी, उनके बिना कुंभकार की कला दिखा रही पड़ी पड़ी,
0: जी
1: नैनी की मटकिया। अंतिम में देखें कि ईंटों के बिछौने पर लेटी हुई सो रही,
0: ईंटों के बिछौने पर।
1: लेटी हुई सो रही, आगंतुक अतिथियों की पद धूल धो रही।
0: क्या बात है।
1: मैं थोड़ा बता दूं, हमारे यहाँ जो ग्रामीण परिवेश में बाखर होती थी, तीन चार घर इकट्ठे होते थे
0: जी
1: और उसकी एंटी कॉमन होती थी।
0: जी हाँ जी हाँ
1: तो दहलीज के बाद एक, उसे मोरी कहते थे, वहां एक पटिया पड़ी रहती थी, सब लोग हाथ पैर धोते थे। ये उसका बिंब है कि ईंटों के बिछौने पर पड़ी हुई लेटी हुई सो रही आगंत मानवाधिक आप मानवीकरण देखें इसमें,
0: जी
1: कि ईंटों के बिछौने पर लेटी हुई सो रही, आगंतुक अतिथियों की पद धूलि धो रही। वैसे तो हजारों लोटे पानी पड़ जाता रोज, वैसे तो हजारों लोटे पानी पड़ जाता रोज, कर रही है किंतु माँ तुम्हारे ही लोटे की खोज, मोरी वाली पटिया।
0: क्या बात है, क्या बात है। मोरी वाली पटिया, बहुत खूब, बहुत
1: तो
0: खूब।
1: ये गीत हमारा 18 साल की उम्र का है।
0: आपकी ये जो काव्य यात्रा शुरू हो गई उसके बाद, जब आप अंग्रेजी विभाग में यहाँ प्रोफेसर हो गए आगरा कॉलेज में, तो तब से ये लगातार यात्रा चल रही है आपकी।
1: यात्रा पहले से है उसके,
0: अच्छा।
1: एक्चुअली शुरू में हमने गीत लिखे, फिर दोहे लिखे, मुक्तक लिखे, छंद भी लिखे हैं,
0: जी जी जी
1: कुछ
0: जी
1: घनाक्षरी सवैये, लगभग हिंदी में जितनी प्रचलित विधाएं हैं सब में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाया है, लेकिन
0: जी
1: प्रमुख रूप से गीत।
0: प्रमुख उसपे।
1: और गीत की यात्रा तो लगभग मेरी 40 वर्ष की है।
0: जी
1: 40 वर्ष से मैं गीत लिख रहा हूँ। आगरा कॉलेज में तो 93 में आया, 1993
0: जी
1: में आया मैं। उस समय तक तो मेरे काफ़ी गीत हो चुके थे। और आपको थोड़ा बता दूँ, यहाँ आगरा में शिक्षा दीक्षा होने के बाद मेरी फिर पोस्टिंग दिल्ली हो गई थी,
0: जी
1: और वहाँ रहकर जब मैं वहाँ रहा तो मैंने PhD का रजिस्ट्रेशन तो आगरा यूनिवर्सिटी में था, एक प्रैक्टिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। तो वहाँ बहुत रहना हुआ और वहाँ बड़े बड़े विद्वानों से, रचनाकारों से, बड़े बड़े लेखकों से मुलाकातें हुई, कुछ ऐसे संयोग हुए, किससे बहुत लंबे लंबे हैं कहाँ तक सुनाएं, लेकिन एक बता शॉर्ट में बताना चाहूँगा, बिहार के बहुत बड़े कवि, अपने युग के सबसे बड़े हिंदी के कवि थे आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री,
0: जी जी जी
1: जो
0: जी
1: निराला के बहुत बड़े भक्त थे।
0: जी हाँ
1: इतने बड़े भक्त कि मुजफ्फरपुर में जो उनका निवास है उसका नाम निराला निकेतन है,
0: क्या बात
1: शास्त्री
0: है।
1: भवन नहीं, निराला निकेतन। उसमें मैं रह के आया हूँ एक सप्ताह।
0: अच्छा
1: तो उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, तो वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के लिए आए थे। तो उनकी सेवा में हम लोग 3 महीने, तीन मित्र लगे रहे।
0: क्या बात है।
1: वो जो 3 महीने का सेवा काल था, 1.5 महीना हॉस्पिटल में और उसके बाद 1.5 महीना वही एक ग्रीन पार्क में एक कमरा लेकर रहना पड़ा था उन्हें। वहां देश का ऐसा कोई बड़ा कवि, लेखक, साहित्यकार नहीं था जो उनसे मिलने नहीं आया, और हम चूंकि उनकी सेवा में थे तो हर वक्त वहां रहते थे, तो
0: जी
1: उनकी वार्ता सुनते थे। उनकी वार्ताएं सुन सुन के जो हमें तकनीकी पक्ष, जो रचनाओं का जो बारीकी पक्ष है, उसको जो हमने आत्मसात किया, वो हमारे लिए गोल्डन पीरियड था, हमारे सीखने के लिहाज से
0: बहुत बड़ी बात है ये।
1: ये बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल
1: जब
0: बिल्कुल
1: हॉस्पिटल में थे तो आप देखिए, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, अटल बिहारी वाजपेयी,
0: जी जी
1: जब विपक्ष के नेता थे, उनको रूबरू हमने बिल्कुल सुना है,
0: जी
1: थोड़ी बहुत बात भी की है। तो वो आपस में बात करते थे तो साहित्य चर्चा होती थी। अब देखिए, जब दिग्गज साहित्य चर्चा करते हैं तो हर पक्ष

0: आता है वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मैं तब 31-32 साल का युवक था, मुझे बहुत स्नेह करते थे, बगल मिठा लेते थे और सबसे परिचय भी कराते थे, तो ये मेरा सौभाग्य, उसमें हमें देश के वीरेंद्र मिश्र बॉम्बे से आते थे।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह गीत की जो बारीकियां मैंने वहां सीखी।
1: आपको गुरुचरणों में रहने का सौभाग्य मिला एक तरह से।
0: जी बहुत बड़ा सौभाग्य।
1: और ये बहुत बड़ी बात है कि वहां रहकर आपने बहुत कुछ सीखा और उसको आत्मसात किया अपनी रचनाओं में।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, आपके अब तक कितने काव्य संग्रह वगैरह आ चुके हैं, कुछ क्या प्रकाश्य है? क्या
0: काव्य संग्रह छपाने में थोड़ा मैं सुस्त रहा
1: जी,
0: तो ये बहुत लेट है। मुझे एक बात याद आती है आपके जवाब में, एक बार मैं कहना चाहूंगा, दो ही है, एक गीत संग्रह और एक गजल संग्रह अभी निकले हैं ये
1: जी,
0: और इनका विमोचन यही 12 फरवरी को हुआ था।
1: जी जी जी जी।
0: गुलजार का मैंने एक इंटरव्यू सुना था,
1: हाँ,
0: जावेद सिद्दीकी जो बहुत बड़ी फिल्म वर्ल्ड के बहुत बड़े एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, शायर हैं, गीतकार हैं,
1: जी
0: वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो गुलजार साहब से उन्होंने पूछा कि गुलजार साहब, आपने तो बहुत बाद में आपके संग्रह आए और फिर उसके बाद तो बहुत लिखा है आपने, बहुत छपा, आजकल के जो नई पीढ़ी के रचनाकार आ रहे हैं उनके बारे में क्या आपकी सोच है? तो गुलजार साहब ने कहा कि आजकल की पीढ़ी बहुत जल्दी में है, इट्स इन ट्यूरिंग हरी, ये उन्होंने कहा सेंटेंस, वो सीखते बाद में है, छपने पहले लगते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है,
0: छपवाने पहले लगते हैं। उनकी किताबें आने लगती हैं और जब उनसे बात करो तो उन्हें मोटी मोटी बातें नहीं मालूम
1: जी, हाँ जी,
0: काव्य रचना की तो बहुत शीघ्रता में है। सिद्दीकी साहब ने कहा कि फिर तो आप मुझे 100% अंक देंगे, क्योंकि मेरा पहला शेरी मजमुआ 62 की उम्र में छपा। तो मैं यहाँ आपको जन साहब ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ये दोनों पुस्तकें तब छपी जब मैं 66 वर्ष का हो गया, अब मैं 67 का हूँ।
1: नहीं, लेकिन आपके जो दोनों पुस्तकें हैं वो बहुमूल्य कृति है
0: तो
1: हिंदी साहित्य जगत।
0: आप ये कह सकते हैं, मैं एक सेंटेंस भी कहना चाहूंगा कि लेकिन ये धीमी आंच पर बना हुआ पका हुआ भोजन है,
1: निश्चित रूप से वो बहुत ही स्वाद है,
0: ये फास्ट फूड नहीं है जो झटपट में लाया गया हो।
1: जी हाँ जी,
0: ये धीमी आंच पर आप जो गांव में देखें भरोसी में जो पकता रहता
1: था, जो धीमी आंच पर जो आपका पका हुआ भोजन है उसका कुछ रसास्वादन हमारे श्रोताओं को करवाइए।
0: जरूर कराएंगे
1: जी जी जी।
0: पहले आप गीत सुनेंगे या गजल बताएं?
1: नहीं, पहले आप गीत सुनाइए। पहले
0: गीत सुनाइए आपको। चलिए आपको एक गीत सुनाते हैं। ये गीत
1: स्वागत
0: आपकी सेवा प्रस्तुत है। इधर उधर की सुनी सुनाई, कहते रहते चांद गगन की, आज कहो कभी अपने मन की,
1: आज कहो कभी अपने मन की,
0: आज कहो कभी अंतर मन की,

0: तरुमन की बन देखें।
1: स्वागत।
0: छल फरेब पर राग द्वेष पर काफी कलम चला ली तुमने, नफरत पर लिख कर लोगों से दूरी बहुत बढ़ा
1: बढ़ा ली
0: ली
1: तुमने।
0: तुमने। छल फरेब

0: कुछ अपनेपन
1: अपनेपन की
0: की
1: क्या बात है, अपनेपन का जवाब नहीं, बहुत
0: बात
1: खूब बहुत खूब।
0: इस मकाम पर आकर अब तो बात करो कुछ
1: अपनेपन
0: अपनेपन की, आज कहो कवि अंतर मन की, आज कहो कवि अपने मन की। और देखिएगा
1: स्वागत
0: कि रूप रंग में कलम डुबो कर बहुत लिखा तुमने यौवन पर, चलने को भी तके सहारा बूढ़े थके थकाए तन पर। उम्र के अलग अलग दौर पर रूप

0: बदलो विषय काव्य रचना का, कथा कहो तो तुले बचपन
1: क्या बात
0: की
1: है, क्या बात है,
0: आज
1: क्या बात है, क्या
0: कहो,
1: बात है, बहुत खूब,
0: कवि अंतर
1: बहुत खूब,
0: मन
1: बहुत सुंदर,
0: की
1: बहुत सुंदर।
0: आज कहो।

बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा यौवन काल का लेखन कि खुली लटों का सघन अंधेरा उसने तेरा तन मन घेरा, खुली लटों का सघन अंधेरा।

0: गया
1: सवेरा।
0: सवेरा, पहली बार उठाया था जब, पहली बार उठाया था जब, उस क्षण की उस अवगुंठन की
1: क्या बात है, क्या
0: हाथ
1: बात है, क्या
0: कहो
1: बात है, बहुत
0: कवे
1: सुंदर,
0: अंतर मन
1: बहुत सुंदर,
0: की।
1: बहुत सुंदर।
0: पहली बार उठाया था जब, उस क्षण की उस
1: अवगुंठन
0: अवगुंठन
1: की,
0: की,
1: हाँ
0: आज कहो कुछ अंतर मन की, आज कहो कवि अपने मन की। आंख आंख में, नजर नजर में।

0: छीनी, जिसने नींद रात की छीनी, कहो मित्र कुछ उस चितवन की, आज कहो कवि अंतर मन की, आज कहो कवि अपने मन की। और देखिएगा एक बंद के, बहुत उड़ लिए दिव्य गगन में, सूक्ष्म व्योम के सूनेपन में, आध्यात्मिक की ओर चली जाती है। बहुत उड़ लिए दिव्य गगन में, सूक्ष्म व्योम के सूनेपन में, ऊंची बातें बहुत हो गई, बहुत जी लिए ऊंचेपन में, नीचे उतरो कहो आज कुछ, नीचे उतरो कहो आज कुछ, इस धरती की इस जीवन की,
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत को
0: कवि अंतर मन की, आज कहो कवि अपने मन की। और देखिए हमारे युवा वर्ग के लोग पढ़ लिख के विदेशों में चले जाते हैं देश छोड़ के। एक हमने मेरा कवि, ऐसा नहीं है कि विदेश में जाना कोई गलत है, कमाइए खाइए, लेकिन लौट के वतन में आइए,
1: बिल्कुल
0: लोग वहीं सेटल हो जाते हैं। उसे मेरे भीतर के कवि को शिकायत है, तो वो शिकायत देखिए कि बाहर काफी हरियाली है, आकर्षक डाली है,
1: क्या बात है,
0: मन को मोह रही कोयलिया, गा गा कर जो मतवाली है, बाहर काफी हरियाली है, आकर्षक डाली है, मन को मोह रही कोयलिया।

0: बात अलग है उस आंगन की,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: लेकिन जिसमें
1: खेले
0: खेले
1: खाए,
0: खाए, बात अलग है उस आंगन की। आज कहो कभी अंतर मन की,
1: बहुत सुंदर,
0: आज
1: बहुत सुंदर,
0: कहो
1: बहुत सुंदर,
0: कभी अपने मन
1: बहुत
0: की।
1: खूबसूरत गीत, बहुत
0: बहुत बहुत
1: मोहक
0: शुक्रिया
1: गीत, और बहुत ही ये जो आपका लास्ट का जो बंद है ये बहुत ही अच्छा बंद है।
0: जी, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, आपकी ये जो कविता संग्रह जो प्रकाशित हो चुके हैं और इसके बाद भी आपका लगातार लेखन जारी है, तो चूंकि आप इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं तो अंग्रेजी में भी आपने कुछ काम किया होगा।
0: जी, अंग्रेजी में हमने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं
1: जी
0: और कुछ पोएम्स भी शुरू में लिखी थी।
1: अच्छा,
0: अभी भी कोशिश की जा सकती है, लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है,
1: जी
0: एक विद्यार्थी, साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते, शायद हिंदी और अंग्रेजी या उर्दू, भाषा का अंतर मायने नहीं रखता है।
1: जी
0: साहित्य मुख्य रूप से एक ही चीज है, वो किसी भाषा का हो,
1: जी
0: उसमें वही मानवीय संवेदनाएं होती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप किसी भी भाषा का साहित्य पढ़ लें,
1: जी हाँ
0: बेसिक जो वैल्यूज हैं वो वही हैं।
1: जी हाँ
0: तो मेरा ये मानना है कि जो आपका स्वाभाविक प्रस्फुटन है,
1: जी
0: नैसर्गिक प्रस्फुटन, वो उसी भाषा में श्रेष्ठतम होता है जो आपने घुट्टी में सीखी है,
1: बिल्कुल सही
0: जो
1: बात है, ये
0: माँ
1: बात
0: की
1: बिल्कुल
0: गोद में
1: ठीक है,
0: सीखी है।
1: बिल्कुल सही
0: इसलिए
1: बात
0: उसे
1: है।
0: मातृभाषा कहा गया, पितृभाषा नहीं कहा जाता उसे,
1: जी।
0: क्योंकि माँ से पहली बार। तो वो नैसर्गिक विकास होता है उस भाषा का,
1: बिल्कुल
0: और आपके तन और मन में जो उद्दीपन होते हैं, जो संवेदनाएं उठती हैं, उनका जो श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति होती है वो अपनी भाषा में होती है। ये मैं मानता हूं
1: जी
0: और इसे मैं प्रूव भी कर सकता हूं।
1: जी
0: लिखने को अंग्रेजी में लिखा जा सकता है, मैं लिखता हूं, लिखा है। स्टोरी तो मैंने इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में नहीं लिखी है।
1: जी
0: मेरी शॉर्ट स्टोरीज हैं इंग्लिश
1: लेकिन
0: में,
1: आप मानते हैं कि आपका जो द बेस्ट है वो आपका
0: वो
1: हिंदी,
0: मातृभाषा।

0: कमी है,
1: आपकी मातृभाषा में
0: बिल्कुल।
1: है। डॉक्टर साहब, आपको मैंने कई बार आपको मंचों पर और कभी तमाम सारी गोष्ठियों में सुना है, आप बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, तो आज के जो काव्य मंच है उसके बारे में आपका क्या विचार है?
0: जैसा मंच को हमें गया, मैंने शुरुआत की मंच पर जाना 2004 से मैंने शुरू की थी, उससे पहले मंचों में नहीं गया था
1: जी।
0: वो हुआ ऐसा, हमारे आगरा कॉलेज में हम लोग ये सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों की एक समिति होती थी जिसमें मेरा
1: जी
0: और हमारे डॉक्टर घोष मिलकर बहुत कार्यक्रम कराते थे
1: जी जी जी।
0: तो हर साल एक एक सप्ताह होता था कल्चरल वीक
1: जी जी,
0: उसमें तमाम प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए
1: जी जी,
0: उसको स्पॉट करने के लिए।
1: वो आज भी होता है? वो
0: अभी होता है
1: जी,
0: वो तो कॉलेज का
1: जी, जी
0: हिस्सा है, उसी जीवन का हिस्सा है। तो उसमें एक बार क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी जिसे मैं और डॉक्टर रेखा बत्सारिया
1: जी
0: सम्मिलित रूप से संचालित कर रहे थे
1: जी।
0: सामने सोमदादा बैठे थे, श्रद्धे प्रत्यय प्रताप दीक्षित अद्दा बैठे थे
1: जी जी जी,
0: और शायद कैप्टन व्यास चतुर्वेदी भी थे
1: जी,
0: चौधरी सुखराम सिंह थे
1: जी,
0: ये लोग सब सामने बैठे हुए थे, उनके सामने की बात है। तो रेखा पत्सरिया ने वहां कहीं संचालन में कह दिया कि हमारे जो सह संचालक हैं डॉक्टर त्रिमोहन साहब की तरह, ये बहुत अच्छे गीतकार हैं और बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं, तो मैं चाहूंगी कि हाँ आज सुनाए। उन्होंने ये कह दिया, तो गीत तो नहीं, मैंने वहां 10 दोहे सुनाए
1: जी।
0: सोम ठाकुर सुन के इतने अभिभूत हुए कि जब वो खुद मंच पर बुलाए गए और आए तो उन्होंने उस सेंटेंस बोला, मुझे याद है कि भाई डॉक्टर त्रिमोहन ने अलवेले दोहे सुनाए और इतने अच्छे तरन्नुम में सुनाए, मेरा तरन्नुम इतना अच्छा नहीं है, उन्होंने ये कहा। हालांकि आप जानते हैं उनका तरन्नुम और उनकी आवाज सब कुछ अच्छा है,
1: निश्चित रूप से,
0: लेकिन उनकी ये विनम्रता थी
1: जी,
0: उनकी सदाशयता थी, उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने 2-4 दोहे सुनाए गीत सुनाने से पहले। तो जब वो कार्यक्रम समाप्त हुआ, जब उन्होंने विदाई कर रहे, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, आपके पास प्रतिभा है, प्रस्तुति है, व्यक्तित्व है, सब उन्होंने ये कहा
1: जी,
0: आप मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हमने क्यों क्या आ रहे हैं, मंच बुलाता नहीं तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। ईमानदारी से कहा
1: जी जी जी जी,
0: बोले नहीं आप आइए। और तो वो 2-4 मंचों वो ले गए, दद्दा ले गए, फिर इस तरह शुरुआत हो गई
1: जी।
0: फिर हम अपने आप ही जाने लगे, बड़े बड़े मंचों पर भी गया और मझोले और छोटे मंचों पर भी गया
1: जी।
0: लेकिन मेरा अनुभव यह है कि अब ये तो बात 20-25 साल पुरानी है जब हमने शुरुआत की थी, तो बड़े अच्छे अच्छे मंचों में गया, बड़े बड़े शायरों और कवियों से खूब मुलाकातें हुई, नीरज जैसे धुरंधर विकल उत्साही साहब के बगल में बैठ के सुनाया
1: जी।
0: लेकिन अब इधर आके हिंदी के मंच पर गुटबाजी, टांग खिंचाई, ये बहुत अधिक बढ़ गई है,
1: मतलब विशुद्ध कविता कम
0: पीछे हो गई,
1: बिल्कुल
0: खत्म हो गई प्राय
1: जी।
0: मैं तो ये तो नहीं कहूँ बिल्कुल, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मंच पर कविता नहीं है,
1: लतीफे चुटकुले
0: इसे आप ये कह सकते हैं कि मैं पूर्वाग्रह मेरे अंदर, लेकिन नहीं, मंच पर बहुत अच्छी कविताएं सुनाई जाती थी और श्रेष्ठतम कवि मंच से उभरे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप
1: बिल्कुल।
0: जानते हैं
1: डॉक्टर हरिवंश राय, आज के परिप्रेक्ष्य में ये शायद
0: तो अब शोमैनशिप है
1: जी,
0: अब कविता पीछे खिसक गई है
1: जी,
0: मेकअप आगे आ गया है और धड़ेबाजी, ग्रुप्स बन गए हैं, अपने अपने ग्रुप में उसी में बुलाए जाते हैं। चूंकि मैं, मुझे सबसे जो प्रिय है मुझे खुददारी
1: जी,
0: आप सम्मान से समझौता नहीं है किसी भी कारण से नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये कविता जीवित रहे, कविता जीवित रहे, कविता का वर्चस्व बना रहे, तो इसके लिए आप हमारे जो नए जो रचनाकार हैं उन्हें आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैसेज मेरा यह है कि नए रचनाकार सीख हैं
1: जी,
0: पहले सीख हैं फिर आए इस क्षेत्र में, और जो जानकार लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके पास बैठे उठे संबंध बनाए। हम लोग ये करते थे
1: जी,
0: बड़े रचनाओं के पास बैठते थे। देखिए गीता में कृष्ण ने, आप जानते हैं, कहा है अर्जुन से कि ज्ञान पानी की तरह ऊपर से नीचे बहता है
1: जी,
0: तो तू मेरी शरण में आ जा, ज्ञान तुझे अपने आप मिल जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: अर्जुन से कहा उन्होंने। मैं यही अपने शिष्यों से कहता हूं कि जिसमें भी आपको ज्ञान लगता है आपके हिसाब से कि ये ज्ञानी है जो आपको कुछ ज्ञान दे सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो, उसके नजदीक जाओ,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बैठो
1: बिल्कुल।
0: उठो, संपर्क बनाओ, उनका सम्मान करो, आप अपना जो अहम है उसे त्याग कर उनके पास जाओ, तो आप सीखेंगे और तभी मजेंगे आप कवि के रूप में,
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: चाहे वो
1: बिल्कुल।
0: कला कोई भी हो, कला का क्षेत्र ऐसा है कि बिना उस्ताद के नहीं आता। आपके आजकल की पीढ़ी तो स्वयंभू उस्ताद है, वो खुद ही वो सीखते ही नहीं है, और उन्हें अगर आप टोकें तो नाराज हो जाते हैं। तो ये परिदृश्य जो है, यहाँ हम बहुत कड़वी बातें नहीं कहना चाहते, अच्छी चीजें भी हैं
1: निश्चित रूप से,
0: और मंच पर भी
1: तमाम लोग बहुत अच्छा लिख भी
0: रहे हैं। नई पीढ़ी में बहुत अच्छे रचनाकार उभर रहे हैं, ऐसा नहीं है
1: जी
0: कि पुरानी पीढ़ी में कविता तो हमेशा रहेगी, और अच्छे रचनाकार हमेशा संख्या में कम होते हैं, हर युग में रहे हैं
1: जी,
0: तो आज के युग में भी कमी है, लेकिन भीड़ उनकी आ गई है जो उन पर हावी है, ये जरूर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
1: नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति को बदला जा सकता है, आप जैसे सक्षम लोग हैं, आप जैसे गुणी लोग हैं, आप जैसे विद्वान लोग हैं, उन चीजों को बदल सकते हैं। तो आप हमारे इन रचनाकारों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि भाई कुछ अगर आपको पाना है तो सीखना पड़ेगा,
0: बिल्कुल, कोई शॉर्टकट है ही नहीं,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: देयर इज नो अदर वे।
1: मैंने आपकी कविताओं में देखा कि आप तो छंदबद्ध कविताएं लिखते हैं, तो छंद मुक्त कविताओं के बारे में आपका क्या ख्याल है?
0: छंद मुक्त कविता ऐसा नहीं है, कविता तो होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े देखे बड़े बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने अधिकांत और छंद मुक्त कविता में नाम कमाया और अभी भी है
1: जी।
0: बल्कि देश का अगर साहित्यिक परिदृश्य देखें तो जो मेन स्ट्रीम में है, आलोचना की मेन स्ट्रीम में इस समय नई कविता ही है।

0: जी
1: छंदोबद्ध कविता को वो बहुत कम स्थान देते हैं,
0: जी
1: और इसके लिए एक अलग फिर वो दड़ेबाजी वाली बात आ जाती है। तो
0: जी
1: मुझसे अगर पूछे तो मैं तो छंद मुक्त कविता को भी पसंद करता हूँ।
0: जी
1: मैं स्वयं तो कम लिखता हूँ।
0: सीधी बात यह है कि जिसमें भी आपके भावों का संप्रेषण बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है,
1: कविता जिसमें हो,
0: जी
1: विधा कोई भी हो,
0: बिल्कुल,
1: उसमें शर्त यह है कविता का तत्व होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो जो छंद मुक्त कविता है उसमें जो इंटरनल रिदम होती है,
0: जी,
1: अंतर प्रवाह, अगर वो मेंटेन कोई कर सकता है तो कविता है। लेकिन उसके नाम अगर प्रोज लिख दिया आपने, सीधा गद्य लिख दिया
0: तो
1: है,
0: वो कोई मतलब नहीं है, वो कोई मतलब नहीं,
1: तो फिर उसमें कविता नहीं होती, मर जाती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अच्छे लोग हैं उसमें, उस फील्ड में भी लिखने वाले। लेकिन हाँ, मैं तो छंदबद्ध लिखता हूँ।
0: तो डॉक्टर साहब, आप अभी कुछ दोहों की बात कर रहे थे, कुछ दोहे हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं कुछ।
1: सबसे पहले जो मैंने दोहे लिखे, और आप अभी मैंने बात की थी कि पहला गीत मैंने माँ की याद में लिखा,
0: जी,
1: पहला गीत भी, पहला दोहा भी मैंने माँ को संबोधित है। आप देखिए,
0: अच्छा,
1: कदम कदम चौपड़ बिछी,

0: चाल।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
0: अम्मा
1: क्यों
0: क्यों
1: सिखला दिया?
0: सिखला दिया चलना सीधी चाल। और एक दुआ और देखें, फिर उसी खानदान का दुआ है, माँ को ही देख कर वह लिखा गया। तेरा

0: देखूं या
1: तोए,
0: तो
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
0: मेरी दुविधा मात ये जग देखूं या तोए।
1: बहुत खूब आपने दोहे कहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब गजलों पर भी आपका उतना ही समान अधिकार है और आप बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। हम चाहेंगे चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को एक किसी अपने बेहतरीन गजल के कुछ शेर। स्वागत।
0: खो न जाऊं भीड़ में, तन्हा रहा हूं इसलिए।

0: इसलिए
1: इसलिए क्या बात
0: खो न
1: है, क्या बात है।
0: जाऊं भीड़ में, तन्हा रहा हूं इसलिए। शेर देखें कि दर्द सीने में, पैथोलॉजिकल शेर देखिएगा, कि दर्द सीने में इकट्ठा होके जम जाए नहीं,
1: दर्द सीने में
0: दर्द
1: इकट्ठा।
0: सीने

0: इसलिए
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या
0: खो न जाऊं भीड़ में तन्हा रहा हूं इसलिए। चांद पर बहुत शेर कहे गए हैं, एक शेर मेरा देखिए नाचीज का, किला के बच्चों की हथेली पर तो रख सकता नहीं,

0: इसलिए
1: क्या बात है,
0: खून जाऊं
1: क्या बात है
0: भीड़ में। और एक शेर और देखें, ये गजल का मकता है, मैं समाप्त करता हूँ कि नफरतें जो ठोस हैं कुछ तो तरल हो जाएंगी। तखल्लुस का इस्तेमाल देखें,
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: कि नफरतें जो ठोस हैं कुछ तो तरल हो जाएंगी। मैं मोहब्बत के तराने गा रहा हूँ
1: गा रहा हूँ इसलिए क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है,
0: भीड़ में तन्हा रहा हूँ इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत खूब डॉक्टर साहब। आप यूं ही मोहब्बत के तराने गाते रहें, यूं ही गुनगुनाते रहें, यूं ही आप सक्रिय रहें और लगातार हिंदी साहित्य को अपना श्रेष्ठतम देते रहें। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया वो लोगों के बीच में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर त्रिमोहन तरल से श्री नीरज जैन की।

ये बातचीत। और इसी बातचीत के साथ कार्यक्रम आज के अतिथि यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत। उदित नारायण की आवाज में, शब्द रचना है समीर की, संगीत रचना है नदीम श्रवण की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज़ों में दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सड़क फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सड़क फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं विश्वात्मा फिल्म से। आवाज़ है साधना सरगम की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना है विजू शाह की।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर कुमार सानू की आवाज़ों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारी आज की दोपहरकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5:00 आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत की शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 1,04,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा। तो श्रोताओं, तीसरी सभा में कि आरंभ

5:30 का वक्त होता है युवाओं के दैनिक कार्यक्रम युवाणी का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे फैजा खान की वार्ता। विषय होगा स्वच्छ पर्यावरण और खुशहाल जीवन।

श्रोताओं, 6 बजे कार्यक्रम होता है ग्राम्य लोक, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शिव शंकर शर्मा की वार्ता नवीनीकरण से लाभ।

मजदूर मंडल कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ताकार डॉक्टर विनोद कुमार महेश्वरी से नीरज जैन की बातचीत में भेंट वार्ता, विषय होगा पुस्तकों से कीजिए प्यार।

श्रोताओं 7:10 ये वक्त होता है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर कुमार भारद्वाज की वार्ता पर्यावरण सुरक्षा के बढ़ते खतरे।

माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 7:31। तो श्रोताओं, ये था हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुर संध्या कार्यक्रम लेकर हम लौटेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जोधा अकबर, इस फिल्म में आप सुन रहे थे A.R. रहमान की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत था A.R. रहमान का। पुकार इस फिल्म में सुनी लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीतकार है A.R. रहमान।

रॉकस्टार फिल्म में आप सुन रहे थे ए आर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज़ में प्रसून जोशी का लिखा गीत, संगीत था ए आर रहमान का। इसी के साथ सुर संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अदिति अग्रवाल और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट कार्यक्रम युवाणी, जहां बात होती है दिल की, देश और भविष्य की। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आप जिस मोबाइल से वीडियो कॉल करते हैं, मौसम की जानकारी देखते हैं, गूगल मैप यूज़ करते हैं, राइट, उसके आखिर पीछे काम कौन करता है? हम अक्सर आसमान के ऊपर तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ घूम रहे सैटेलाइट्स हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बना रहे हैं, शायद हम में से काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे भारतीय प्रोजेक्ट की, जो आने वाले समय में भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में भी और भी पावरफुल बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रोजेक्ट गरुड़ की। लेकिन हमेशा की तरह चलिए दोस्तों, ले लेते हैं आज का सवाल सेगमेंट। दोस्तों, आज 24 मई है और आज पूरी दुनिया में एक बेहद खास दिन मनाया जाता है। ये दिन जुड़ा है एक ऐसे शानदार और अनोखी जंगली जानवर से, जिसे दुनिया में लार्जेस्ट वाइल्ड गोट स्पीशीज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी से जुड़ा है आपके लिए आज का सवाल। ब्रश योर ब्रेन एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। उस जंगली जानवर का नाम बताइए जिसके सम्मान में 24 मई को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। चलिए अब एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ। ये जानवर दोस्तों अपने खूबसूरत मुड़े हुए सींगों के लिए काफ़ी फेमस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सोचिए, अपने आंसर तैयार रखिए, क्या नाम है उस अनोखे वाइल्ड लाइफ एनिमल का। और हाँ, डोंट वरी, इसका सही जवाब मैं आपको दूंगी हमारे कार्यक्रम के एंड में, तो बने रहिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, प्रोजेक्ट गरुड़। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये प्रोजेक्ट गरुड़ आखिर है क्या? दोस्तों, प्रोजेक्ट गरुड़ एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म प्रोग्राम है, जिसे हैदराबाद की स्पेस स्टार्टअप कंपनी ध्रुवा स्पेस ने लॉन्च किया है। अब आप सोच रहे होंगे, ये स्पेस प्लेटफॉर्म चीज नाम की है क्या? सिंपल भाषा में समझे तो दोस्तों, ये ऐसा सिस्टम है जहां सैटेलाइट्स को जल्दी, आसानी और बड़ी स्केल पर तैयार किया जा सके। यानी जैसे किसी फैक्ट्री में कार बनती है, वैसे ही फ्यूचर में सैटेलाइट्स भी फास्ट तरीके से बन सके, और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है। दोस्तों, प्रोजेक्ट गरुड़ में एक नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे कहा जाता है फ्लैग पैक आर्किटेक्चर। अभी सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन दोस्तों समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल की तरफ। अब दोस्तों, हम सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट? अब ऑनलाइन शॉपिंग में एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर। दोस्तों, फर्नीचर फ्लैट पैक होकर आता है ताकि कम जगह ले सके और आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। वैसे ही ये सैटेलाइट भी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों, इससे इनके फायदे क्या हो सकते हैं? पहला फायदा दोस्तों ये है, लॉन्च में कम स्पेस लगना, एक साथ ज्यादा सैटेलाइट भेजे जा सकते हैं, साथ ही साथ टाइम और कॉस्ट दोनों बचेंगे। और यही नहीं दोस्तों, सैटेलाइट जल्दी तैयार होंगे। यानी दोस्तों, फ्यूचर में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और अफोर्डेबल हो सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया टेक्नोलॉजी की रेस में बहुत आगे बढ़ रही है, राइट? और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हर देश चाहता है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम हो, बेहतर इंटरनेट हो, स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो और एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग हो, राइट? और इन सब के लिए सैटेलाइट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, प्रोजेक्ट गरुड़ भारत को इन क्षेत्रों में और मजबूत बना सकता है, लाइक थ्रू टेलीकम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेशनल सिक्योरिटी, डेटा और एआई बेस्ड सिस्टम। यानी सिर्फ स्पेस की बात नहीं है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सीधे हमारे फ्यूचर सिक्योरिटी और डिजिटल ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों ये है कि ध्रुवा स्पेस का लक्ष्य फ्यूचर में ये है कि वो साल भर में लगभग 500 से 600 सैटेलाइट बना सके। सोचिए दोस्तों, आज जहां सैटेलाइट्स बनना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस माना जाता है, वहीं भारत फ्यूचर में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है।

और सबसे इंस्पायरिंग बात तो दोस्तों ये है कि इनिशिएटिव किसी फॉरेन कंपनी का नहीं है बल्कि एक इंडियन स्टार्टअप का है। इनफैक्ट दोस्तों यही नहीं, हम लोगों के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों अक्सर हम लोग सोचते हैं कि स्पेस सेक्टर में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स या साइंटिस्ट ही काम कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आज स्पेस इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज है लाइक डेटा एनालिस्ट, कोडिंग, एआई एंड रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, डिजाइंस, रिसर्च एंड मेनी मोर लाइक साइबर सिक्योरिटी। यानी अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, टेक्नोलॉजी सीखने की इच्छा है, तो स्पेस सेक्टर आपके लिए फ्यूचर बन सकता है। ये सैटेलाइट हमारी लाइफ में एग्जैक्टली करता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों गूगल मैप तो हम सब यूज़ करते हैं सुबह निकलने से पहले, वेदर फॉर अपडेट्स देखते हैं, यही नहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी, फार्मिंग मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेविगेशन जैसे सिस्टम, इन सब में सैटेलाइट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अगर फ्यूचर में ज़्यादा सैटेलाइट्स होंगे तो सर्विस और बेटर हो सकती है। लेकिन लेकिन दोस्तों हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे स्पेस डेब्रिस, साइबर थ्रेट्स, हाई इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल फेलियर्स। अगर बहुत ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाएंगे तो आप ही सोचिए दोस्तों, स्पेस ट्रैफिक भी बढ़ सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। अब दोस्तों लाइक कॉइन हैज़ टू फेस, तो अगर दोस्तों चैलेंजेस है तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं हमारे पास। कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं जैसे सस्टेनेबल सैटेलाइट डिजाइंस, बेटर साइबर सिक्योरिटी, स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स ट्रेनिंग, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों हम लोगों के यंग माइंड को इनोवेशन के लिए इंकरेज करना। दोस्तों एक छोटी सी बात याद आई, जब हम मेड इन इंडिया सुनते हैं तो अक्सर फोन्स, क्लोथ्स या कार याद आते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए वो दिन जब दुनिया कहे द फ्यूचर सैटेलाइट्स आर बीइंग बिल्ट इन इंडिया, क्या फीलिंग होगी, राइट? दोस्तों प्रोजेक्ट गरुड़ से भी प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत के सपने की उड़ान है। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको मौका मिले तो आप स्पेस सेक्टर में क्या बनना चाहेंगे, साइंटिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉट या फिर सैटेलाइट डिजाइनर, ये नहीं तो फिर पक्का एआई इंजीनियर है। अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए मुझसे। याद रखिए दोस्तों, अगर हमारी यंग माइंड ऐसे ही नई आइडियाज लेकर आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि स्पेस इकोनॉमी में भी दुनिया का सबसे लीडर बनेगा। और दोस्तों अब इसी के साथ अब समय हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत गाना जो सपनों, उम्मीदों और नई उड़ानों की बात करता है। गाने के बाद फिर हम वापस आएंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए ले लेते हैं आपके लिए ये प्यारा सा गाना।

वेलकम बैक दोस्तों. दोस्तों अभी कुछ देर पहले हमने बात कर रहे थे भारत के फ्यूचर टेक्नोलॉजी मिशन यानी कि प्रोजेक्ट गरुड़ की, जहां हमने जाना कि कैसे इंडियन स्पेस और इनोवेशन में नई ऊंचाइयों को छू रहा है. और दोस्तों जब भी हम देश की प्रगति की बात करते हैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स भी किसी देश की पहचान और यूनिटी को दुनिया के सामने दिखाने का बहुत बड़ा माध्यम बनते हैं. क्योंकि खेल सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं है होता दोस्तों, ये डिसिप्लिन, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस और यूनिटी भी सिखाते हैं. तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की जो अलग अलग देशों को फ्रेंडशिप और स्पोर्ट्समैनशिप के धागे से जोड़ता है. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स. यही नहीं दोस्तों, आज का दिन भी इससे जुड़ा हुआ है. आज मनाया जाता है राष्ट्र मंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे. लेकिन दोस्तों आखिर ये कॉमनवेल्थ क्या है, ये गेम्स शुरू कब हुए, क्यों हुए और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या कहती है, चलिए दोस्तों थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और जानते हैं ये चीज़ कॉमनवेल्थ है क्या. दोस्तों कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब दुनिया में कई देश ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे. धीरे धीरे जब ये देश को आज़ादी मिली तब एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जहां अलग अलग देश फ्रेंडशिप, कॉपरेशन और यूनिटी के साथ जुड़े हैं रहे. इसी ग्रुप को कहा गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और इसी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए शुरू हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स. दोस्तों पहली बार ये गेम्स साल 1930 में कनाडा में हैमिल्टन सिटी में आयोजित किया गया थे. उस समय सिर्फ 11 देश ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज इसमें 70 से ज़्यादा देश और टेरिटरीज में खिलाड़ी भाग लेते हैं. यही नहीं दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स खास क्यों हैं. दोस्तों ओलंपिक्स की तरह यहाँ भी कई स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जैसे बैडमिंटन, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग. लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स की सबसे बड़ी खास बात तो ये है, यहाँ कंपटीशन के साथ साथ फ्रेंडशिप और कल्चरल कनेक्शन भी दिखने को मिलता है. यानी सिर्फ मेडल नहीं बल्कि देशों के बीच भाईचारा भी जीतता है. दोस्तों इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स में हमेशा शानदार प्रदर्शन रहा. जब भी हमारे खिलाड़ी तिरंगा लेकर मैदान में उतरे हैं तो हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाता है, चाहे वो पीवी सिंधु की बैडमिंटन जीत हो या वो मैरी कॉम की बॉक्सिंग स्पिरिट हो, मीराबाई शानू की स्ट्रेंथ हो या नीरज चोपड़ा का गोल्डन थ्रो इन खिलाड़ी.

0: खिलाड़ियों ने दुनिया को दिखाया कि इंडिया किसी से कम नहीं। खेल क्यों जरूरी है दोस्तों? आज के टाइम में हम लोग ज़्यादातर समय मोबाइल फोन्स या स्क्रीन पर निकाल देते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स हमें सिखाता है डिसिप्लिन, पेशेंस होना, टीम वर्क कैसे करते हैं, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और सबसे इम्पोर्टेंट, हार के बाद फिर से उठना, क्योंकि ज़िंदगी भी एक खेल की तरह ही है दोस्तों। कभी जीत कभी हार, लेकिन रुकना कभी नहीं चाहिए दोस्तों। ये गेम्स हमें सिखाते हैं कि अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी हम कनेक्ट रह सकते हैं, कंपटीशन के साथ रिस्पेक्ट भी उतनी ही ज़रूरी है, और मेहनत से इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं दोस्तों। अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, कोई खिलाड़ी बनकर भी देश का नाम रोशन कर सकता है। और याद रखिए, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, उसके पीछे इयर्स ऑफ हार्ड वर्क भी छुपा होता है। पर दोस्तों, जब भी टॉक अबाउट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका होती है एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण की, क्योंकि अगर हवा साफ हो, पानी शुद्ध हो और आसपास का वातावरण हेल्दी हो, तभी एक इंसान फिजिकली और मेंटली फिट रह सकता है दोस्तों। आज आप अपने अगल बगल देख सकते हैं, पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट और एनवायरमेंटल इशू तेज़ी से बढ़ रहे हैं, राइट? और यही वजह है कि स्वच्छ पर्यावरण और खुशहाल जीवन जैसे विषय पर बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं इसी खास विषय पर एक बेहद इंफॉर्मेटिव वार्ता, स्वच्छ पर्यावरण और खुशहाल जीवन, हमारी एक्सपर्ट फैज़ा खान से।
1: संभावनाओं से भरी जिंदगी की डोर आती जाती सांसों से बंधी होती है, और इन सांसों का आधार है हरा भरा वातावरण यानी पर्यावरण। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वह पौधे ग्रहण कर लेते हैं, उसके बदले वह हमें देते हैं बेशकीमती ऑक्सीजन। एक अनुमान के अनुसार एक स्वस्थ पेड़ से 260 पाउंड ऑक्सीजन हर साल हमें मिलता है। इस तरह के दो पेड़ 3 लोगों की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करते हैं। यानी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे लिए पौधे और बेहतरीन वातावरण की आवश्यकता भी बढ़ गई है। हम सब पर्यावरण को अपने अपने ढंग से जानते और समझते हैं। पर्यावरण यानी जो प्राकृतिक रूप से हमारे चारों तरफ है और पृथ्वी पर हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। हवा जिससे हम हर पल सांस लेते हैं, पानी जो हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, पौधे, जानवर और सभी जीवित चीजें, सब पर्यावरण के तहत ही आती हैं। स्वस्थ पर्यावरण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है और साथ ही साथ पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को बढ़ने और विकसित करने में मदद करता है। पर्यावरण हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास में भी अहम है। गौरवशाली परंपरा और अनूठी संस्कृति के देश भारत में पर्यावरण को उच्च महत्व दिया जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की अनेक घटकाओं जैसे वृक्ष को उच्च मानकर उनकी पूजा की जाती है, जलवायु, अग्नि को भी पवित्र मान के उनकी पूजा की जाती है, धरती को भी माँ का अमूल्य स्थान दिया गया है। समय के साथ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सा गया है। पर्यावरण के इस बिगड़ते स्वरूप के पीछे ढेर सारे कारण हैं। पर्यावरण की समस्याएं विकासशील राष्ट्रों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन गई हैं। सभी ऋतुएं अपना अस्तित्व को खोती नजर आ रही हैं। समय पर ठंड नहीं पड़ना, गर्मी में ज्यादा गर्मी और वर्षा के समय पर वर्षा का ना आना, या कहीं कहीं बेमौसम अधिक वर्षा होना, कहीं अकाल की स्थिति पैदा होना, ये सब पर्यावरण में बदलाव का ही नतीजा है और कई बार जीवन मरण का सवाल पैदा हो जाता है। प्रदूषण भी एक पर्यावरणीय समस्या है जो आज एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान सब उसकी चपेट में है। कारखानों, बिजली घरों और मोटर वाहनों में खनिज ईंधनों का अंधाधुंध प्रयोग होता है। इनके चलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है और मौसम में असामान्य बदलाव हो रहा है। पिछले 100 सालों में वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते तापमान से दोनों ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगी है, जिससे कई देशों के डूबने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा तो कुछ जगहों पर तूफान आएगा और कहीं भारी वर्षा हो सकती है। धुएं से निकलने वाली विषैली गैस वायु प्रदूषण को कई गुना बढ़ा रही है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में प्रदूषण के कारण हर दिन

0: कई लोग मर रहे हैं और सैकड़ों लोगों को फेफड़ों और हृदय की जानलेवा बीमारी हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हवाई जहाज से सबसे अधिक प्रदूषण होता है। कोयला, डीजल, पेट्रोल के चलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। भारत में ऐसी कई नदियां हैं जिनके जल अब अशुद्ध हो गए हैं। दूषित पानी पीने से ब्लड कैंसर, त्वचा कैंसर, हड्डी रोग, हृदय व गुर्दों की तकलीफ और पेट की अनेक बीमारियां हो रही हैं, जिनसे हमारे देश में हजारों लोग हर साल मर रहे हैं। एक और पर्यावरणीय समस्या है वनों की कटाई। विश्व में प्रतिवर्ष अकेले भारत में कई लाख हेक्टेयर वन काटे जा रहे हैं। वनों के विनाश के कारण वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं। पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप के पीछे एक अहम कारण है रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग। उसकी लगातार प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है। ये सिर्फ एक इलाके की ही बात नहीं है, इस तरह के प्रभाव कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा ऐसे भाग बढ़ेंगे उतना ही पर्यावरण को नुकसान होगा। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया हुआ है। इस समस्या से उभरने के लिए पूरी दुनिया को एक होने की जरूरत है। हम सबको अपने अपने स्तर पर कोशिश करने की जरूरत है। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे भी यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। कुछ उपायों को अमल में लाकर हम पर्यावरण के स्वरूप को बिगड़ने से बचा सकते हैं। युवा आगे आकर अपना सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। जल ही जीवन है। स्वच्छ और ताजा पानी समय के साथ और अधिक कीमती होता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथीन का बहिष्कार सबसे ज्यादा जरूरी है। दुकानदारों से पॉलीथीन पैकेट में सामान नहीं लेना चाहिए। आसपास के लोगों को पॉलीथीन से उत्पन्न खतरों के बारे में अवगत कराने की जरूरत है। बिजली के उपकरण का उपयोग कर चुके तब उसे बंद कर देना चाहिए। इससे आप अपने बिजली के बिल को ही नहीं बल्कि ऊर्जा को भी बचाएंगे। सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके हम इसके कई लाभ उठा सकते हैं। पेड़ ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। हम उन्हें उगाने के बजाय काट देते हैं। हर व्यक्ति को पेड़ लगाने की जरूरत है जिससे जीवन में काफी सुधार होगा। इससे हवा साफ होगी और पेड़ों की संख्या वापस सामान्य हो जाएगी। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस का प्रभाव कम हो जाएगा। सही मायने में गो ग्रीन कहने के लिए ही नहीं बल्कि करने के लिए भी आसान है। खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो आइए एक शपथ लें कि हम सब अब पर्यावरण को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे।
1: थैंक यू फैज़ा, आपने इतनी ब्यूटीफुली और आसान शब्दों में हमारे सभी दोस्तों को समझाया कि कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें अपना कर हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और अपनी लाइफ को हेल्दी और खुशहाल बना सकते हैं। सच ही कहा गया है दोस्तों, अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे आज का सवाल का सही जवाब जानने का। याद है शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था, उस जंगली जानवर का नाम बताइए जिसके सम्मान में 24 मई को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और मुझे पूरा यकीन है आप सब में से कई लोगों ने इसका सही जवाब सोच लिया होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मारखुर। जी हाँ दोस्तों, मारखुर दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड गोट स्पीशीज मानी जाती है। ये अपने खूबसूरत स्पाइरल यानी मुड़े हुए सींगों के लिए काफ़ी फेमस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों ये है कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी जाना जाता है। इंटरनेशनल मारखुर डे इसलिए मनाने का उद्देश्य है ये है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, ताकि ऐसे खूबसूरत और दुर्लभ जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। और इसी खूबसूरत शाम को और भी सुहाना बनाने के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो आपके दिल को और भी हल्के हल्के मुस्कराने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों तो इन्जॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ आपके लिए।

हिप हॉप टुडे दोस्तों, रोज कुछ नया सीखते रहिए। आज इंटरनेट पर लर्निंग के काफ़ी ऑप्शंस हैं, यूट्यूब, फ्री कोर्सेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप घर बैठे कुछ नया स्किल हमेशा सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त भी हो चला है, लेकिन आज की इस खूबसूरत मुलाकात में हमने साथ मिलकर काफ़ी कुछ सीखा, समझा, कभी टेक्नोलॉजी की दुनिया को जाना तो कभी स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट की बात भी करी, और साथ ही इस प्यारे से गाने को भी इंजॉय किया। उम्मीद है दोस्तों आज का ये सफ़र आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं थी इसी के साथ आपकी दोस्त अदिति अग्रवाल, आपसे ज़्यादा इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए टॉपिक्स, नई एनर्जी और ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार दोस्तों।

हम सफर देवेंद्र, हम सबके पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीलोक को लेकर। साथियों, आज सुबह जब हम अपनी किताबों के पुराने पन्ने पलट रहे थे तो हमने उसमें देखा कि हमारी एक पुरानी तस्वीर मिली, देखने को मिली। उसे देखते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं और सोचने लगे कि हम सब अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ दिन चुरा कर जब किसी नई जगह, नए शहर, नई वादियों की तरफ घूमने फिरने निकलते हैं तो मन को कितना सुकून सा मिलता है, दिल कितना हल्का हल्का सा महसूस करता है, सारी चिंताएं एकदम छूमंतर सी हो जाती हैं और पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। सच में ये यादें हमें दोबारा से अपने आप से रूबरू करा देती हैं, इसलिए कुछ समय पर्यटन के लिए यानी कि भ्रमण के लिए भी जरूर निकाला कीजिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर एक नई ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और भैया, ये परंपरा तो शुरू से चली आ रही है। अरे भाई, हम आप भी तो जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर, कभी बुआ के घर। हालांकि पहले हमारे पास उतने अच्छे साधन नहीं थे जितने कि आज हैं। आज साधन है तो हम आप दूर दूर तक घूमने फिरने चले जाते हैं। वैसे एक बात है, जितना जरूरी घूमना फिरना है या कहें कि पर्यटन करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सफर के दौरान सावधानी बरतना, क्योंकि जब हम सतर्क होंगे तभी हमारी यात्रा मंगलमय होगी। तो सबसे पहले तो जहां भी हम जा रहे हैं वहां के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर कर लें। अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी की एक सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर हमें कोई परेशानी ना हो। और जब हम किसी नए शहर, नए ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां की हर चीज हमारे लिए नई होती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो अति उत्साह में सावधानी का पूरा ध्यान रखें, यानी कि सतर्कता जरूर बरतें। किसी भी होटल या धर्मशाला को चुनते समय सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें, किसी भी अनजान व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा न करें। इसके अलावा किसी से भी कीमती सामान या अपनी निजी जानकारियों को साझा न करें। और जब हम दूसरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो कभी कभार हमारा नुकसान हो जाता है। और जब हम दूसरी जगहों पर जाएं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम वहां के स्थानीय नियमों का पालन करें, जैसे पहाड़ों रास्तों पर चढ़ते समय, पहाड़ी रास्ते जो होते हैं, या पहाड़ों पर चढ़ते समय, नदियों या समंदर की लहरों के पास जाते समय जो चेतावनी के बोर्ड्स लगे होते हैं उस पर जो संदेश लिखा होता है, और स्थानीय प्रशासन के मौसमी जो संबंधित जानकारी होती है, जो निर्देश होते हैं, उनका भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। और पर्यटन एक खूबसूरत पहलू है तो इसका हमें भरपूर आनंद लेना चाहिए। हम जब भी कहीं जाएं तो वहाँ के स्थानीय जो दुकानदार हैं, गाइड हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, उनसे हमेशा आदर और शालीनता से बात करें, क्योंकि हमारी भाषा की मिठास ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और हमारी पहचान है। और हाँ साथियों, एक बात पर और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है और वो है अपने खान पान पर, क्योंकि सफ़र में अक्सर हमारा खान पान बदल जाता है। तो स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत से समझौता ना करें, क्योंकि तन स्वस्थ होगा तभी हमारा मन सुंदर नजारों का आनंद ले पाएगा। तो करते रहिए खूबसूरत नजारों का दीदार, क्योंकि हर मोड़ पर कुदरत ने आपके लिए छुपा रखा है एक नया निखार। और वैसे भी घूमना फिरना किसे पसंद नहीं है, नई जगह, नए लोग, ढेर सारी यादें। अच्छा साथियों, जब घूमने फिरने की बात हो तो राष्ट्रमंडल देशों का नाम सबसे पहले आता है। हमारे देश से लेकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से लेकर मालदीव और यूके तक 56 देशों का यह खूबसूरत परिवार पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज राष्ट्रमंडल दिवस है, ये दिन हमें याद दिलाता है, भले ही हम भौगोलिक रूप से एक दूसरे से दूर हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, हमारा पहनावा अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम 56 देशों के एक बहुत बड़े वैश्विक परिवार का हिस्सा हैं। ये दिन आपसी भाईचारे और आत्मीयता की याद हमें दिलाता है और उस एक मजबूत एक इस कहते हैं ना याद दिलाता है और ये एक मजबूत जरिया है, एक मजबूत कड़ी है आज का दिन हम सबके लिए, हमारे सब 56 देशों के लिए। और साथियों, जब आपसी भाईचारे और आत्मीयता की बात हो रही है तो हमारे परिवार में भी कई ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें हम इंसानों से कम नहीं आंकते, भले ही वे हमारे बेजुबान पशु ही क्यों ना हों। कभी कभार उनसे हमारा इतना गहरा लगाव हो जाता है, इतना आत्मिक जुड़ाव हो जाता है कि वे हमारे परिवार का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। तो कैसे करें इस भीषण गर्मी में अपने परिवार के उस
अटूट हिस्से की देखभाल

0: इस विषय में जानने के लिए हम पहुंचे एक पशु अस्पताल।
1: हम इस समय मौजूद हैं एक पशु चिकित्सालय में और हमारे साथ हैं जन पशु प्रसार अधिकारी प्रशांत जी। तो हम उनसे जानेंगे कि इस समय बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं उन्हें अपने पशुओं के प्रति किन किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है।
2: देखिए, सबसे पहले तो पशुओं को गर्मी से बचाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उनके अंदर मिनरल की कमी ना होने दें।
1: खनिज लवण?
2: हाँ, खनिज लवण।
1: खनिज लवण क्या होते हैं बताते चलिए।
2: जी, जैसे कॉपर, कैल्शियम, ये सब खनिज, इन चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए।
1: तो ये क्या हमें रातर या दाना है, हम खिलाते चोकर वोकर उससे मिल सकते हैं?
2: जो हरा चारा है उससे मिलता है, सबसे पहले तो उसी से मिलता है। बाजार में मिनरल मिक्सचर आते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी की कमी होती है जानवरों में, तो उन्हें छाया में बांधना चाहिए और मिनरल मिक्सचर देना चाहिए समय समय से, चाहे बाजार से लेके, क्योंकि हरे चारे की भी धीरे धीरे कमी हो रही है। तो सबसे पहले तो उनके अंदर मिनरल की कमी नहीं होने देना और पानी की कमी।
1: अच्छा, खान पान का कैसा हम लोग ध्यान रखें?
2: देखिए, संतुलित आहार जो है उसमें ऐसा नहीं, हमारी थाली में हरी सब्जी भी होनी चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, ऐसे ही उनके संतुलित आहार में क्या है, भूसा भी होना चाहिए, दाना भी होना चाहिए, हरा चारा भी होना चाहिए, मिनरल भी होना चाहिए, मिनरल मिक्सचर में थोड़ा नमक भी देना चाहिए, गर्मी के मौसम में थोड़ा सा नमक भी देना चाहिए।
1: तो सर, ये कितनी मात्रा में कुछ?
2: देखिए, जैसे 2 किलो भूसा है और 2 ही किलो हरा चारा होना चाहिए,
1: बराबर
2: बराबर मात्रा, और 1 किलो दाना होना चाहिए।
1: दूध के हिसाब से दाने की मात्रा बढ़ा,
2: दूध के हिसाब से वो बढ़ा।
1: अच्छा, पशुओं में इस समय आमतौर पर अगर बात की जाए तो कौन से रोग होने की संभावना रहती है गर्मियों के समय?
2: समय तो देखिए, हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है जानवरों में भी, जैसे इंसानों में, वैसे जानवर
1: अटैक अटैक करता है, उनमें भी पड़ता है,
2: उनमें भी टेम्परेचर पड़ने का खतरा रहता है। सर, उन क्या अचानक टेम्परेचर 104 हो जाता है, 105 हो जाता है, तो टेम्परेचर ही बहुत तेजी से बढ़ता है।
1: तो सर, इसके बचाव के लिए क्या करें?
2: कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, पसीना बिल्कुल नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, पसीना बहुत आता है, पानी की कमी हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता उसका।
1: अच्छा,
2: हाँ, दोनों ही चीजें होती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सबसे पहले तो जानवरों को इसीलिए कहा जाता है, छाया में बांधना चाहिए और समय समय पर ताजा पानी पिलाएं।
1: अगर बात की जाए वो खुरपका मुंहपका के बीमारियां बहुत बड़े स्तर पर चल रही है,
2: हाँ,
1: तो इससे कैसे बचाव किया जाए?
2: खुरपका मुंहपका बीमारी के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाए समय पर, साल में 2 बार जो है विभाग वैक्सीनेशन कराता है, कोई फीस नहीं लगती है हमारे यहाँ, तो साल में 2 बार वैक्सीनेशन होता है, जानवरों सभी जानवरों को वैक्सीनेशन करवाए।
1: ये कब कब होता है सर, साल में 2 बार?
2: साल में 2 बार यही दिसंबर जनवरी में होता है
1: पहला,
2: और इधर जो है जुलाई अगस्त में होता है।
1: वैक्सीनेशन के बाद संभावना
2: कम हो जाती है,
1: कम हो जाती है, मतलब ये नहीं कि होगा नहीं। अच्छा, भाई साहब, किसी पशु को हो जाए
2: जी
1: तो फिर उसके कैसे बचाव?
2: अगर किसी जानवर को FMD हो जाती है, खुरपका मुंहपका हो जाता है, तो उसको अलग बांधे, बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग बांधे, उसका ट्रीटमेंट करवाएं।
1: अच्छा, घरेलू लोग कहते हैं
2: फिटकरी से धुआं, देखिए ऐसा होता है, फिटकरी में जो है इन्फेक्शन रोकने की क्षमता होती है, इन्फेक्शन नहीं होता तो फिटकरी
1: संक्रमण नहीं होगा,
2: संक्रमण नहीं होगा, तो फिटकरी के पानी से उसके मुंह के घाव को और पैर के घाव को धोया जाता है
1: सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा, सरसों का बहुत से लोग तेल पिला
2: देते हैं, सरसों का हल्दी डाल।
1: अच्छा अच्छा,
2: अगर तेल यूज करेंगे
1: हल्दी डाल के उसको पिला दीजिए। अच्छा, गर्मी के मौसम में जैसे बहुत से पशु अफारा टाइप का हो जाता है, तो इससे कैसे बचाव?
2: देखिए, अफारा मतलब पेट फूलना, पेट फूलना यानी गैस भर जाती है, हमारा जो है संतुलित आहार नहीं देते या बहुत ही ज्यादा भूसा खा लेना, इस समय जो ताजा भूसा
1: गरिष्ठ भोजन हम लोग कर लेते हैं, हम लोग गरिष्ठ भोजन कर लिया,
2: इस समय ताजा भूसा आ रहा
1: है
2: तो बिना भिगोए देंगे तो पेट फूल जाएगा,
1: तो भिगो के ही खिलाना चाहिए। पानी कितना डालना चाहिए सब कुछ?
2: नहीं, पानी मतलब भूसा गीला हो जाए बस, भूसा गीला, ऐसा नहीं है भूसा गीला हो जाए पर्याप्त।
1: अच्छा, बकरियों में बहुत बीमारियां चलती है, चैपा टाइप का हो जाता है, तो उसके लिए क्या?
2: सर्दी गर्म, सर्द गर्म से ही होता है वो भी,
1: तर गर्म
2: जिसे बोलते हैं,
1: मतलब छाया धूप, छाया
2: धूप, छाया पता चला कि धूप से आए और तुरंत पानी में
1: पानी खिला गया।
2: जानवर भी उतने ही सेंसिटिव होते हैं, ऐसा नहीं जैसे इंसान सेंसिटिव होता है वैसे ही जानवर भी सेंसिटिव होता है, ठीक है ना।
1: अच्छा, तो चराने के लिए जो दिन भर बकरियों वाले चराते हैं तो उनका कुछ टाइम होना चाहिए?
2: शाम को जो है 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद चराना,
1: वैसे लोग दिन भर
2: गलत दिन भर नहीं चराना, सारी दिक्कत धूप से ही है। देखिए आप, इस समय 47 से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और अगर धूप ढंग से लग गई या लू लग गई तो जानवर भी उसी तरीके से बीमार पड़े। तो पानी खूब पिलाइए, जानवर क्या होता है पानी नहीं पीता, आप पानी दूर रखा हुआ वो नहीं पिएगा, तो उसे समय समय पानी दिखाइए, 5 से 6 बार पानी दिखाएंगे तो ऐसा नहीं पानी नहीं पिएगा।
1: अच्छा सर, पशु जहाँ हमारे बाड़ा होता है वहाँ की साफ सफाई कितनी जरूरी होती है? झाड़ू भी मार देते हैं, इसके अलावा
2: समय समय पर सप्ताह में या 10 दिन में एक बार उसकी फिटाइल के पानी से धुलाई होनी चाहिए, इससे रसाइड्स भी होते हैं।
1: नहीं, वो तो कच्चा होता है ना सर, बाड़ा आड़ा तो कच्चा होगा।
2: हाँ, पानी छिड़क दीजिए ना उसे।
1: अच्छा, अरे चूना डाल दें तो?
2: चूना डाल दीजिए वो भी पर्याप्त, कीड़े मकोड़े मर जाए, इन्फेक्शन खत्म हो जाए, मतलब कुल मिला के पैरासाइट्स को खत्म करना और इन्फेक्शन को खत्म करना, बाड़े में ऐसी व्यवस्था हो कि पैरासाइट खत्म हो जाए, इन्फेक्शन खत्म हो जाए, हवा के

0: नेचर व्यवस्था हो,
1: हवा का आधा कवन बना रहे हो।
0: अगर तीन तरफ से दो तरफ से घिरा हुआ तो पंखे वंखे की या कूलर वूलर, इसमें गर्मी इतनी ज्यादा है कि इसकी व्यवस्था हो।
1: दूध सर बहुत कम हो जाता है गर्मियों में, दूध कम देने लगते हैं, उसका क्या कारण है, इसके लिए कोई उपाय है कि?
0: देखिए गर्मी का मौसम है, दूध तो कम हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, सबसे ही पड़ेगा चाहे कितना भी दूध उसका कम फर्क पड़े। उसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि आप उसको जो है एक तो ठंडक में बांधे, दूसरा समय समय पर पानी पिलाए। आहार पे खास ध्यान रखें, आहार उसका प्रोटीन युक्त होना चाहिए, हरा चारा होना चाहिए, अगर हरा चारा नहीं भी है तो मिनरल मिक्सर तो होना चाहिए।
1: मिनरल मिक्सर देते रहना। अच्छा मिनरल मिक्सर पशु अस्पताल में मिल जाता है क्या?
0: हाँ मिल जाता है, मिल जाता है पशु अस्पताल में। आपको अगर समाप्त ना हुआ हो तो मिल जाता है,
1: कहीं से भी कोई किसान हमारा जाकर ले सकता
0: है? ले सकता है, राजकीय पशु अस्पताल से कहीं से भी ले सकता है।
1: अच्छा चलते चलते सर हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए बस यही कहना चाहूंगा कि गर्मी बहुत पड़ रही है तो अपने जानवरों को छायादार जगह पर बांधें, ठीक है, और गर्मी से बचा के रखें, धूप से बचा के रखें, और उनके खान पान की उचित व्यवस्था रखें, ठीक है ना। आपकी देखभाल से ही बच्चे जो है पशु सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और आपको भी लाभ होगा।
1: चलिए सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, आप उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: साथियों। अभी पशुधन प्रसार अधिकारी शशांक जी ने बड़ी ही उपयोगी बातें बताई हमें, तो उम्मीद है हम आप उन पर ज़रूर अमल करेंगे। और अब देखिए बातें तो बहुत हो गई, अब बात कर लेते हैं मनोरंजन की, तो आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

0: साथियों देख रहे हैं गर्मी का हाल, अभी क्या हुआ, अभी जब बारिश में उमस वाली गर्मी आएगी तब देखिएगा। वैसे साथियों इस भीषण गर्मी में इतनी जो पड़ रही है उसके लिए कुछ हद तक हम आप भी जिम्मेदार हैं। अरे पेड़ों को लगाने की जगह काटने में लगे हैं, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार वृक्षारोपण हर वर्ष करवाती है, फ्री में पौधे जो हैं उनका वितरण गांव-गांव में किया जाता है, पर लगते कितने हैं, शायद 100 में से 10 भी नहीं। अब हम आप क्योंकि उनकी देखभाल तो करते नहीं हैं, जबकि जानते हैं पेड़ पौधों यानी वनीकरण से हमें अनेकों लाभ होते हैं, और आज उन्हीं लाभों के विषय में हमारी चौपाल में बताने जा रहे हैं शिवशंकर शर्मा जी।
1: ही वन मनुष्यों के साथ ही बने रहे हैं। आदिकाल का मानव जब जंगली अवस्था में रहता था तो वन ही उसका घर होता था, पेड़ों की छाल और पत्ते ही उसका प्रधान था। पेड़ों के फल कंदमूल एवं वन के पशुओं के शिकार से वह अपने पेट की भूख शांत करता था। वन ही उस समय मानव की हर आवश्यकता को पूरा करते थे। इस तरह वन तथा मनुष्यों का संबंध अति प्राचीन है। वनीकरण शब्द का अर्थ है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से गांवों का विकास सहज ही संभव है। वन एक ऐसा गोदाम है जहां से हमें भोजन बनाने के लिए ईंधन, फर्नीचर के लिए लकड़ी और कागज के लिए लुगदी मिलती है। वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। वनों में उगने वाले वृक्ष हमारे जीवन का मुख्य अंग है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड सेवन करके हमें प्राण वायु देते हैं। वृक्षों के अभाव में हमारा जीवन दुर्लभ हो सकता है। इसके अलावा वृक्ष हमारी भूमि को ढकते हैं और उसके पोषक तत्वों की रक्षा करते हैं। वास्तव में किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए, आर्थिक विकास के लिए एवं समृद्धि के लिए वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने शब्दों में कहा है, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। वनीकरण के महत्व को प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर जे एम कॉलिंस ने लिखा है, वृक्ष पर्वतों को थामे रहते हैं, वे तूफानी वर्षा को दबाते हैं, नदियों को अनुशासन में रखते हैं, झरनों को बनाए रखते हैं और पक्षियों को जीवन दान देते हैं। वनीकरण से हमें अनेकों लाभ होते हैं। इनमें से गाँव में विकसित वनीकरण से लाभ इन तथ्यों द्वारा वर्णित होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हैं लकड़ी की प्राप्ति। वनीकरण करने से हमें अनेक प्रकार की लकड़ी मिलती है। गाँव में किसान अपने खेत के चारों ओर वृक्ष लगाकर अपने खेत की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इन वृक्षों की उपयोगी लकड़ी को बाजार में बेचकर धन अर्जित करते हैं तथा घर में ईंधन जलाकर भोजन बनाने के काम लेते हैं। गाँव में किसान लकड़ी और गोबर से देश के कुल शक्ति संसाधनों की 34.6% शक्ति की पूर्ति करते हैं। ग्रामीण वनों से लगभग 450 प्रकार की ऐसी लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें शाल, सागौन, चीड़, देवदार, शीशम, आवनूस, आम, नीम आदि प्रमुख हैं। इनका उपयोग माचिस, फर्नीचर, रेल के डिब्बे, जहाज आदि बनाने में होता है। वनीकरण से हमें लकड़ी के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सहायक उपज मिल जाती है।

0: जैसे लाख, चपड़ा, गोंद, कत्था, छाल, बांस एवं बेंत, जड़ी बूटी, जानवरों के सींग तथा खाल। इनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है। इनसे कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, तेल उद्योग, फूल उद्योग तथा औषधि उद्योग प्रमुख हैं। गांव में अनेक लोग वनीकरण से अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। गांव में जगह जगह निजी नर्सरी यानी पौधशाला बनाकर शहरों में पौध का निर्यात करते हैं। छोटी छोटी क्यारियों में अनेक प्रकार की पौध उगाकर वनीकरण में अपना योगदान करते हैं। भिन्न भिन्न किस्मों के फूलों की पौध तैयार करके फूल उद्योग में अपना स्थान बनाते हैं। गरीब तबके के लोग फूलों की हार माला बेचकर बाजार में अपनी रोजी कमाते हैं। वनों से पशुओं के चारे के रूप में घास फूस प्राप्त हो जाती है, जिससे चारे की फसलों की आवश्यकता कम हो जाती है। इस तरह लगभग 80 लाख व्यक्ति वनों से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ग्रामीण अंचल में वनीकरण करने से मधुमक्खियों द्वारा शहद उद्योग बढ़ा है। लोग छोटे छोटे शहद के बक्से तैयार करके खेतों में रख देते हैं। उनमें मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद प्राप्त करते हैं। रेशम, मोम, कत्था इसी प्रकार वृक्षों से हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गांव के लोग बीड़ी, रस्सी, टोकरी बनाकर लघु कुटीर उद्योगों का विकास करते हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी तथा एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में काम आने वाली विभिन्न पत्तियां, टहनियां, जड़ें, फूल, फल, जड़ी बूटी आदि वनों से ही तो प्राप्त होती हैं। इस तरह भारतीय वनों से लगभग 500 प्रकार की दवाइयां प्राप्त होती हैं। तारपीन, नीम, महुआ, मीठा तेल और दैनिक उपयोग में आने वाले सभी तेल भी वनों से प्राप्त होते हैं। वन प्राकृतिक सौंदर्य में सहायक हैं। अनेक पर्यटक मनोहारी वनों की अनुपम छटा को देखने के लिए अनेक सुंदर स्थलों पर जाते हैं। उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्र इनमें प्रमुख हैं। वनीकरण करके अन्य गौण उपजों में रबर, रीठा, तेल, सिनकोना महत्वपूर्ण हैं। जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों से मांस, चमड़ा, हड्डी तथा पंख भी प्राप्त होते हैं। ग्रामीण अंचलों में मोरों से मोर पंख अधिक प्राप्त होते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ वनीकरण से परोक्ष लाभ होते हैं, जो देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वातावरण के तापक्रम, नमी तथा वायु प्रभाव को नियंत्रित करके वृक्ष जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। आंधी तूफानों से हमारी रक्षा करते हैं। गर्म और तेज हवाओं को रोककर देश की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखते हैं। वृक्ष वातावरण से दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके भोजन बनाते हैं, जबकि अन्य जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करके दूषित वायु निकालते हैं। अतः वायु प्रदूषण को दूर करके पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। वन महोत्सव के जन्मदाता डॉक्टर KM मुंशी ने वृक्षों की उपयोगिता को इन शब्दों में व्यक्त किया है। वृक्षों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी का अर्थ है जीवन। वृक्षों को देखते हुए ही भारत सरकार ने सन 1950 में वन महोत्सव कार्यक्रम लागू किया है। गाँव में किसान सघन वनीकरण करके भूमि कटाव को रोकते हैं। वृक्षों में वर्षा का जल मंद गति से बहता है, इससे भूमि का कटाव कम हो जाता है। वृक्ष वर्षा जल को सोखकर अपनी जड़ों के द्वारा भूमि के नीचे पानी के स्तर को बढ़ाते रहते हैं, जिससे कुआं आदि में पानी का स्तर घटने नहीं पाता। इसी कारण वनों को हरा सोना तथा देश की राष्ट्रीय निधि माना जाता है। हमें चाहिए कि हम इस सोने को बर्बाद न करें।
1: वनीकरण से लाभ, अभी इस विषय में जानकारी दे रहे थे शिव शंकर शर्मा जी। उम्मीद है इस जानकारी के बाद हम आपका रुझान वनीकरण की ओर जरूर बढ़ेगा। आइए साथियों, अब जान लेते हैं मौसम का हाल। तो दोस्तों, मौसम ने तो बेहाल कर रखा है। तापमान लगातार सातवें आसमान पर है। अरे भाई, हमारे कहने का मतलब है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगर बीते हुए 24 घंटों की बात की जाए तो अधिकतम तापमान रहा 44 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 31 डिग्री सेल्सियस। और आगामी 24 घंटों के बारे में उम्मीद है कि अधिकतम

तापमान रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान के 31 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। इस बढ़ते हुए तापमान के बीच एक राहत की खबर ये है कि आने वाले 2 या 3 दिनों में इंद्रदेव शायद कुछ मेहरबानी दिखा दें, लेकिन फिलहाल तो आप सब मेहरबानी दिखा दीजिए कम से कम एक बिजनिया लाकर।

तो साथियों, हम तो चल दिए बिजनिया लेने, आप भी जाइए। और वैसे भी अब समय हो चला आपसे विदा लेने का, तो अपने साथी देवेंद्र को आज्ञा दीजिए। राम राम।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजू बाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। साथियों, गर्मी क्या इशारा कर रही है, यही कि सब अपना ध्यान रखो। और ये इशारा इस ओर भी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े, क्योंकि हम सभी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें कष्ट या परेशानी में नहीं देख सकते। अब आप सोच रहे होंगे

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजू बाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। साथियों, गर्मी क्या इशारा कर रही है, यही कि सब अपना ध्यान रखो। और ये इशारा इस ओर भी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें, क्योंकि हम सभी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें कष्ट या परेशानी में नहीं देख सकते। अब आप सोच रहे होंगे, भला ये क्या बात हुई, एक तरफ गर्मी की बात कर रही हैं, एक तरफ जिम्मेदारियों की बात कर रही हैं। भाई, गर्मी का संबंध है जिम्मेदारियों से। जरा समझिए कि आज जो भी नए नए हालात हमारी धरती पर बन रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं हम इंसान हैं। और अगर हम अभी भी ना बदले तो इसके जो घातक परिणाम है हमारी आने वाली पीढ़ी झेलेगी, और ये आप और हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें तो बच्चों की मुस्कान से बहुत प्यार है। हम सब नहीं चाहते कि वो स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण को तरसे, दूषित वायु से उनके फेफड़ों से संबंधित उन्हें रोग हों, और दूषित जल से उनको पेट के रोग हों, अंगारे बरसा रहा सूरज उनकी त्वचा को झुलसाने का कारण बने, और बाढ़ तूफान भूकंप उनकी मेहनत से बने निर्माण को तहस नहस कर दी। इसीलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए साथियों। वैसे अभी से जलवायु परिवर्तन के जरिए बहुत कुछ संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे श्रमिक साथियों, आप पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा प्रकृति के तत्वों का इस्तेमाल करके काम करते हैं। मिट्टी, रेत, हवा, पानी से ही तो निर्माण कार्य होते हैं, और हमारे कृषि श्रमिक जो हैं वो तो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। उन्हें तो बहुत अच्छे से पता रहता है कि फसल के लिए, भूमि के लिए क्या फायदेमंद है और क्या उसे नुकसान पहुंचा सकता है। आप ही काम के दौरान ये समझ सकते हैं कि बिजली की बचत कैसे करनी है और कौन से तरीके अपनाएं जिससे धूल के कण और निर्माण सामग्री वायु को अस्वच्छ ना करे। श्रमिक साथियों, श्रम के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी आप दिल से, ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाते रहेंगे तो पर्यावरण को संरक्षित रखने में बहुत आसानी होगी, और ये आप बहुत सहजता से कर सकते हैं और करते भी हैं। तो साथियों, आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए और जागरूक बनिए, ताकि हम सब मिलकर भविष्य की चुनौतियों से निपटने की आज ही राह निकाल लें और स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो चलिए, आज का प्रश्न भी स्वस्थ रहने का एक तरीका है। तो बताइए कि योग दिवस कब मनाया जाता है? और ये तो आप जानते ही हैं कि योग से ना सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। वैसे मानसिक शांति का, खुशी का एक और तरीका है हमारे पास, और वो है सुरीला और मधुर संगीत। तो चलिए उसका आनंद लें।

हाँ तो साथियों, कैसा लगा आपको ये गीत? हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वैसे इन दिनों गर्मी बढ़ जाने से बच्चों के स्कूल भी जल्दी बंद हो गए हैं और परिवार के लोग बच्चों को घर में रहने की हिदायत देते रहते हैं, लेकिन शाम होते ही बच्चे ऐसे बाहर निकलते हैं।

0: जैसे कैद से छूटे हों, और गली मोहल्लों सड़कों सब पर रौनक ही दिखाई देती है, और फिर शुरू हो जाते हैं बच्चों के खेल। वैसे क्या पता होता है, जो बच्चे आज गली में खेल रहे हैं भविष्य में खेलों में ही देश में अपना नाम रोशन करें। वैसे खेलों को लेकर अब समाज की सोच भी ना बदल गई है, अब तो माता पिता खुद ही बच्चों को गेम्स में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अरे हाँ, अभी 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी तो होने वाले हैं, जिसे सभी राष्ट्रमंडल देशों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। कोई एक देश इसकी मेजबानी करता है, भाई राष्ट्रमंडल दिवस इसी उद्देश्य से ही तो मनाया जाता है ना, कि सभी सदस्य देश सहयोग करें, विकास की बात करें, मूल्यों का भी आदान प्रदान करें, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ मिलकर खुशियाँ बांटें। और खेल तो वैसे भी एक दूसरे की भावनाओं को समझने और स्वस्थ प्रतियोगिता में सहयोग ही देते हैं। वैसे कॉमनवेल्थ दिवस सच में एक उत्सव है, जो संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की मित्रता को बढ़ावा देता है। खास बात यह है कि इसमें 50 से ज़्यादा देश एक सूत्र में बंधे हैं, और हर तरह का देश एक साथ है, चाहे किसी की आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति जो भी हो, पर सभी एक दूसरे को और विकसित करने के बारे में विचार करते हैं। साथियों, वैसे तो कहने को और भी बहुत कुछ है, पर हम समय के बंधन में बंधे हैं, और अन्य सेगमेंट भी तो है ना कार्यक्रम में। तो ज्ञान सागर में आज इतना ही। साथियों, जब हम ज्ञान सागर शब्द बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वाकई ज्ञान अपने आप में एक सागर ही है। जैसे सागर की गहराइयों में रत्न मिलते हैं, वैसे ही ज्ञान अर्जित करने की राह पर अगर हम खुद को हमेशा एक बच्चे की तरह रखें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। हमें तो चारों ओर ज्ञान की बयार ही चलती हुई महसूस होती है, और अगर आप भी ये महसूस करना चाहते हैं तो पुस्तकों से कीजिए प्यार। और यही विषय भी है हमारी आज की भेंट वार्ता का, जिसमें डॉक्टर विनोद कुमार से बातचीत करेंगे नीरज जैन।
1: पुस्तकों से कीजिए प्यार, जी हाँ मित्रों, हमारी बातचीत का यही विषय है। और इस विषय पर आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विनोद महेश्वरी जी को। तो महेश्वरी जी, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मित्रों, हम जानते हैं कि पुस्तकें हमें कितना आनंद देती हैं, पुस्तकों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, और पुस्तकों से हम ज्ञान विज्ञान की बातें जानते हैं, संसार के बारे में जानते हैं, इस दीन दुनिया के बारे में जानते हैं, अपनी संस्कृति अपने इतिहास और अपनी सभ्यता के बारे में जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अब कष्ट होता है कि पुस्तकों के प्रति लोगों का रुझान कुछ कम होता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
2: देखिए, सबसे पहले तो आकाशवाणी और आपकी पूरी टीम को इस ज्वलंत विषय को उठाने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि पुस्तकों की ओर रुझान, पुस्तकों की ओर लगाव, पुस्तकों के प्रति रुचि जनमानस में निरंतर कम होती जा रही है, और ये बड़ी शोचनीय स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
1: जी।
2: मुझे लगता है कि पुस्तकों जैसा मित्र शाश्वत काल से दूसरा कोई नहीं हो सकता, चाहे वो बचपन हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो
1: जी।
2: लेकिन आज की तकनीकी युग में, आज के इस मशीनरी से लदे हुए युग में, दुर्भाग्य से ये हुआ है कि हम और आप सब तकनीक पर डिपेंडेंट हो गए, मशीन पर डिपेंडेंट हो गए। और सबसे दुखद पहलू इसका यह है कि आज जो शोध हो रहे हैं वो शोध भी लैपटॉप में अवेलेबल हैं
1: जी जी जी,
2: कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, हमारे पास किताबें नहीं हैं। ऐसा नहीं है किताबों के बिना हमारा काम चल रहा है, लेकिन हम पता नहीं क्यों किताबों से विमुख होते जा रहे हैं, और ये स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है भविष्य के लिए।
1: कई बार मैं सोचता हूं कि अगर किताबें नहीं होती तो क्या होता, हमारे जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर वो नहीं लिखे जाते तो हम कैसे अपनी संस्कृति साहित्य के बारे में जान पाते, अपने ईश्वर के बारे में और वेद पुराणों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में कैसे हम तक ये चीज़ें पहुँचती। तो यही स्थिति है कि आगे अगर हम अपनी पीढ़ी को ये सब देना चाहते हैं तो आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि सब लोग तो मशीन के प्रेमी नहीं हो सकते ना।

0: सबके पास लैपटॉप या सबके पास ये टेक्निक नहीं हो सकती।
1: देखिए, मुझे याद है बचपन में हमें और हमारी दूसरी पीढ़ी को भी नानी और दादी कहानियां सुनाया करती थी, लोरी सुनाया करती थी,
0: जी
1: पंचतंत्र की कहानियां कौन नहीं जानता। आखिर ये सब कहां से आया था? ये सब उन्होंने भी पढ़ा था,
0: बिल्कुल
1: सुना था,
0: जी
1: गुना था, सीखा था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा अगर रोता है तो माँ बाप उसके हाथ में या तो मोबाइल दे देते हैं, या उसको लैपटॉप के सामने बिठा देते हैं, या उसको टीवी के सामने बिठा देते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: बेसिकली ये गलती हमारी पीढ़ी कर रही है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हम
0: बिल्कुल।
1: जो संस्कार, जो सीख उनको देंगे, अल्टीमेटली वो उसी राह पे निकल पड़ेंगे।
0: और आगे वो भी अपने बच्चों को, अपनी आगे वाली पीढ़ी को वही,
1: बिल्कुल वही
0: मतलब वही चीज
1: पढ़ाएंगे।
0: ट्रांसफर करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी जी जी
1: बिल्कुल।
0: जी और
1: तो
0: निश्चित रूप से हम संस्कारों से विमुख होते जा रहे हैं।
1: निश्चित,
0: जी
1: बिल्कुल,
0: जी
1: ये
0: जी जी
1: सबसे
0: जी
1: बड़ी
0: जी जी
1: त्रासदी
0: जी
1: है इस युग की, इस समय की। ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम अपने संस्कारों से निरंतर विमुख हो रहे हैं, और उस विमुखता का एक बहुत बड़ा कारण है किताबों से अलगाव। मैं इसे एक बहुत बड़ा कारण मानता हूं कि हम किताबों से जितना दूर होते जा रहे हैं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म हमसे उतना ही दूर होता जा रहा है।
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने परिवार में देखते हैं, हम अपने आसपास के लोगों के परिवारों में देखते हैं कि बच्चों के पास किताबें पढ़ने के लिए समय ही नहीं है। वो लैपटॉप, कंप्यूटर, अपना मोबाइल, इसके अलावा उनकी दुनिया में कुछ किताबें हैं ही नहीं। तो ये हम लोगों का एक दायित्व बनता है, हम माता पिता का या अभिभावकों का, कि उनको पुस्तकों के प्रति प्रेरित करें।
1: ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है या पीढ़ी के पास, युवा पीढ़ी के पास समय नहीं है। समय भरपूर है, लेकिन दुखद यह है कि उनकी अरुचि हो गई है किताबों के प्रति। और जैसा मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि उसके लिए बड़ी पीढ़ी जिम्मेदार है। हम क्यों नहीं बचपन से ही उन बच्चों को किताबों के प्रति रुचि पैदा करते हैं, साहित्य के प्रति रुचि पैदा करते हैं, पढ़ने लिखने के प्रति रुचि पैदा करते हैं। हम क्यों बर्थडे में मिकी माउस दे आते हैं, कोई गिफ्ट दे आते हैं, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर हम क्यों नहीं बच्चों को किताबें भेंट करते हैं?
0: ये बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: जी, और देखिए, आज ऐसा नहीं है कि किताबों का अस्तित्व तो खत्म हो गया।
0: जी
1: किताबों का अस्तित्व तो कभी खत्म नहीं होगा,
0: जी
1: क्योंकि जब तक मानवता है, मनुष्यता है, ये धरती है, ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, किताबें तब तक जीवित रहेंगी, क्योंकि किताबें मनुष्य के जीवन का पर्याय है।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, और आपने भी अभी कहा कि लोगों की रुचि किताबें पढ़ने में, खरीदने में कम होती जा रही है, तो इस रुचि को कैसे पुनर्जीवित किया जाए?
1: बहुत अच्छी बात है। ये हम सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न है और एक समस्या भी है, और ये समस्या कठिन है आज के समय में, लेकिन असंभव नहीं है। क्योंकि अगर हम चाहें, मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि हम बचपन से बच्चे को, बच्चा तो जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इसी तरह हम माँ बाप बच्चों को किताबों के प्रति प्रेरित करें,
0: जी
1: उनमें रुचि पैदा करें, उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएं, उनको किंवदंतियां सुनाएं, जो पुराने हमारे संस्कार और संस्कृति से सराबोर जो कहानियां हैं उनसे रूबरू कराएं, और उनको ये बताएं कि अगर हम जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। जब उनको ये लगेगा कि हम जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो रुचि उनमें पैदा होगी।
0: क्या बात है, आपने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और इस आगे बढ़ने के क्रम में तमाम जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, तमाम एनजीओज हैं, तमाम पब्लिशर्स हैं, ये कुछ प्रयास कर सकते हैं। वो तमाम हम देखते हैं कि, और कई बार लोग आयोजन करते भी हैं कि पुस्तक मेलों का आयोजन होता है, तो इस तरह के आयोजन तमाम संस्थाएं करती हैं, तो उसमें भी हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उसमें प्रेरित करना चाहिए अपने बच्चों को।
1: बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। एनजीओज हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इवन, या बड़े बड़े प्रकाशक हैं। ऐसा होता है कि नेशनल बुक फेयर्स लगते हैं, वर्ल्ड बुक फेयर्स लगते हैं, और रेगुलरली लगते हैं।
0: जी
1: देखिए, किताबों की रुचि का सबसे बड़ा प्रमाण यह है, किताबों की जीवंतता का, उनके जीवित होने का, उनसे हमारी दोस्ती का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पुस्तक मेले कई शहरों में प्रतिवर्ष लगते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में लगता है, हमको, आपको पता है, चाहे
0: जी
1: वो 3 साल या 4 साल में लगता हो, लेकिन नियमित रूप से लगता है। और मैं उसमें कई बार गया हूं, मैंने देखा है अपार जन समूह उसमें उमड़ता है, और ये इस बात का विटनेस है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किताबों से अभी भी रुचि है।
0: जी
1: बस जागरूकता इस बात की पैदा करनी है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसको

0: हम निरंतर उससे प्रेरित करते रहें कि इनमें जीवन है, इनमें संस्कार है, इनमें संस्कृति है।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। और इसी क्रम में हमारे अपने शहर में भी, आगरा में भी, तमाम संस्थाएं अपने बुक फेयर्स लगाती हैं, पुस्तक मेले लगाती हैं, और वहां भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किताबें खरीदते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें भी हम सब लोगों को जागरूक करना चाहिए अपने परिवार के लोगों को जाने के लिए।
0: जी देखिए, नेशनल बुक फेयर आगरा में हुआ था, आगरा कॉलेज ग्राउंड पर। मुझे उसका मालूम है क्योंकि उसके बाद तो कोरोना आ गया तो सब व्यवस्थाएं भंग हो गई। 50 लाख से ऊपर की किताबें उस बुक फेयर में बिकी। ये अपने आप में एक संकेत है कि किताबों से रुचि कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई, और खत्म होगी भी नहीं, क्योंकि किताबों से अगर रुचि खत्म हो गई तो जीवन खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये जीवन चलते रहना चाहिए। और हम ये चाहेंगे, हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास आपके शहर में कभी कोई बुक फेयर लगे तो वहां जरूर जाएं,
0: अवश्य जाएं,
1: अपने बच्चों को लेकर जाएं, अपने परिवारों को लेकर जाएं, अपने मित्रों को लेकर जाएं और अच्छी किताबें खरीदें, उन्हें पढ़ें, उन्हें आत्मसात करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपसे मैं।
1: डॉक्टर महेश्वरी जी, आप हमारे स्टूडियो पर धारे, आपने पुस्तकों के बारे में अपनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार।
2: हाँ तो साथियों, सुना आपने भेंट वार्ता में डॉक्टर विनोद कुमार पुस्तकों के बारे में क्या क्या बता रहे थे, और नीरज जैन कितने सटीक सवाल कर रहे थे ताकि आप सब भी पुस्तकों के प्रति अपना लगाव बनाए रखें। सच में साथियों, पुस्तकें हमारे व्यक्तित्व का आईना है। पुस्तकें प्यार से, चुपके से हमारे मन को बदलने की ताकत रखती हैं। वैसे अब तो ना सारा माहौल ही बदला बदला सा लगता है। कोयले से लिखते लिखते हम कब उंगली घुमाकर फोन पर टाइप करने लगे, ये सारा बदलाव हुआ है एक लंबे समय की सीख से। वाकई नए नए आविष्कार, नई खोजें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और सब कुछ तभी हुआ जैसे जैसे हमें इसकी जरूरत महसूस हुई और इंसान के दिमाग का विकास होता गया। वैसे ये नई खोजें अब काम में बहुत सहायक होती हैं और इनसे बहुत सुविधा भी होती है। और श्रमिक साथियों, आप जब खतरनाक माहौल में काम करते हैं तो ऐसे में ये खोजें आपका बहुत साथ देती हैं। साथियों, आज हम नई खोजें सेगमेंट के अंतर्गत सुरक्षा जूतों की बात कर रहे हैं, और ये जूते श्रमिक साथियों के पैरों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जैसे निर्माण स्थल और फैक्ट्री में भारी चीज़ों के पैर पर गिरने या फिसलने का खतरा बना रहता है, तो उसके लिए स्टील टो वाले जूते पैरों को चोट से बचाते हैं। एंटी स्लिप जूते फिसलने से बचाते हैं, और कुछ जूते तो ऐसे होते हैं जो बिजली के झटके से बचाव करते हैं, और कहीं आपको लंबे समय तक अगर खड़े रहना पड़े तो उसमें काम करना हो तो ऐसे जूते भी हैं जो आपको आराम देते हैं ताकि आप थके बिना काम करते रहें। तो श्रमिक साथियों, ऐसे जूते अगर काम के समय आपको मिल जाएं तो आप बिना थके बिना रुके आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। तो है ना ये आपके फायदे की खोज। आपको ऐसी नई खोजों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी बशर्ते आप कार्यक्रम से जुड़े रहें। अरे ये क्या, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला, और अभी हमें आपको सेहत टिप्स भी देने हैं। लेकिन चलिए पहले आपको दे देते हैं प्रश्न का उत्तर, ये ना हो कि हम भूल ही जाएं। और उत्तर है 21 जून 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और अब साथियों, गर्मी में हम सेहत टिप्स भी ऐसे ही देंगे जिससे आपके शरीर को ठंडक मिले। तो साथियों, ऐसे पदार्थ जिनकी तासीर ठंडी होती है उनका सेवन बहुत लाभकारी रहता है। जैसे गोंद कतीरे का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। इसका सेवन करने से पहले इसे रात भर साफ पानी में भिगोकर रखना ज़रूरी है। सुबह आप इसमें अतिरिक्त पानी को इसमें से निकाल कर छान लें, और फिर इसमें दूध या दही मिलाकर, थोड़ी चीनी या कोई गुलाब या खस शरबत मिलाकर इसे चम्मच से खाएं तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और ऐसी चीज़ों के सेवन से आप स्वस्थ रहेंगे, और गर्मी में भी आपको ठंडक का एहसास होगा और आपके मन में भी ठंडक की बयार चलेगी। तो चलिए अब आप अपने स्थान से खड़े हो जाइए जल्दी। भाई आलस मत कीजिए, क्योंकि हम गीत ही ऐसा बजवाने वाले हैं कि आप थिरकने को मजबूर हो जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया कर कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आर के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि

0: भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Tanvi Kurana. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimension of the partnership,

किया, वरन स्वच्छ जल के भंडारों का अतिरिक्त दोहन भी किया। हमने प्रकृति द्वारा प्रदत्त उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी को रसायनों से विषाक्त ही नहीं किया, हमने उसकी उर्वरा शक्ति को ही विनष्ट कर दिया। इस मिट्टी के लिए कबीर ने कभी कहा था कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। हमने प्रकृति के साथ बहुत घिनौना खेल खेला, विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रित किया। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर यायावर की पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, बर्बादी हंसने लगी, रोने लगा विकास, जल ध्वनि पवन विनाश का जब गूंजा कटुहास, जब गूंजा कटुहास पवन लगती जहरीली, नदी लिए तेजाब हुई हर नहर विषैली, बढ़ता जाता शोर बढ़ रही है आबादी, दूषित पर्यावरण रच रहा है बर्बादी। वास्तव में पर्यावरण हमारे जीने की अनिवार्य शर्त है, हमारा सत्य है, ईश्वरीय अस्तित्व का आभास है। पृथ्वी, जल, वायु, ध्वनि, आकाश, प्रकृति और मानवीय, ये सब मिलकर समूचे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। संसार के समस्त जीवन चक्र को भली भांति चलते रहने की अनिवार्य शर्त है पर्यावरण का संतुलित और प्रदूषण मुक्त रहना। किंतु आज हमारा पर्यावरण अनेकानेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन सारी चुनौतियों, सारी समस्याओं के बीच में एक और नई विडंबना पर्यावरण संतुलन को विनष्ट कर रही है, और वह है युद्ध और सैन्य। भारत ने एक बहुत बड़ा युद्ध आदिकाल में देखा, जो था महाभारत। युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडवों का दिग्भ्रमित होना, उन लाशों के ऊपर राज्य करना, पूरे समाज, राष्ट्र और संसार को विनष्टीकरण की ओर आगे बढ़ने वाला एक कदम ही था। प्रश्न उठता है, जीत हासिल हुई किस कीमत पर? इस दशा को वर्णित करते हुए श्री दिनकर जी ने अपने खंड काव्य कुरुक्षेत्र में लिखा है, तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से, घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृतभूमि से, लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा, लौट आता था भटककर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ, देख लो बाहर महासुनसान है। कई सदियों के बाद भारत ने कलिंग युद्ध देखा, जो अशोक जैसे आततायी सम्राट को अहिंसा और शांति का पुजारी बना गया। अब भी प्रश्न वही था, जीत हासिल हुई लेकिन किस कीमत पर? आज संपूर्ण विश्व विभिन्न स्थानों पर युद्ध और सैन्य अभियानों का सामना कर रहा है, चाहे अफगानिस्तान में चलता हुआ सिविल वार हो, या इराक और सीरिया का सिविल वार, चाहे नाइजीरिया में बोको हरम और सरकार के बीच का युद्ध हो, चाहे लीबिया, माली, सोमालिया, सूडान हो, चाहे रूस और चेचन्या का संघर्ष हो, चाहे फिलिस्तीन और इजराइल या थाईलैंड में सरकार और सेना का संघर्ष हो, चाहे यूक्रेन, फिलीपींस, यमन, कोलंबिया, मैक्सिको, सूची अंतहीन है। इन सब युद्धों में कोई भी जीते, हार तो अंततः पर्यावरण और मानवता की ही होगी। यदि हम भारत की समसामयिक स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि चीन व पाकिस्तान से कई युद्ध लड़ने के अतिरिक्त हमें कितने ही छद्म आंतरिक युद्धों से दो चार होना पड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बहुत बड़े खतरे के मूल में प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण का दोहन ही है। नक्सलवाद, जिसके जन्म का सबसे बड़ा कारण वहां का प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर अधिकार था, वहां के कुछ प्रभावशाली व दबंग लोगों ने प्राकृतिक संपदा पर बलात् अधिकार कर लिया, और यह प्राकृतिक संपदा वहां के मूल निवासियों के जीवन जीने का आधार थी। इसी कारण नक्सलवाद का उदय हुआ, और आज हम सभी जानते हैं कि यही नक्सलवाद देश के कई क्षेत्रों में हमारी सुख शांति को बाधित कर रहा है, देश की प्रगति में बहुत बड़ा रोड़ा है। संक्षेप में कहूं तो युद्ध या सैन्य अभियान किसी भी समस्या का न तो कभी समाधान थे, न है और न रहेंगे। आज मानव युद्धों के द्वारा शांति का रास्ता ढूंढ रहा है, किंतु शांति तो मानव के अंदर ही है। ईश्वर ने जब संसार की रचना की तो उसने अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रकृति का जीवन चक्र बनाया, जिससे हम सुविधापूर्वक आनंदमय और सहजता से जीवन जी सके। किंतु मानव ने सर्वप्रथम विकसित होकर इस धरा को सीमाओं में बांटा, भिन्न भिन्न देश बनाए। मुझे आज भी लगता है कि इतना विकास होने के पश्चात भी मानव कबीलियाई मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया है। वह कबीलियाई मानसिकता जो उसे दूसरों का अधिकार छीनने के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है, वह उसे उसके विनाश की ओर ही ले जा रही है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का संसार है, हम चारों ओर से सूचनाओं से आच्छादित हैं। प्रख्यात मोटिवेशनल इंस्ट्रक्टर शिव खेरा ने कहा है

0: कि वी आर ड्राउनिंग इन इंफॉर्मेशन बट स्टार्विंग फॉर नॉलेज. हम सूचनाओं से आकंठ डूबे हुए हैं लेकिन ज्ञान के लिए तरस रहे हैं. टेक्नो सेवी और इन्फॉर्मेशन सेवी होने के अलावा यदि आज विश्व की सबसे बड़ी महती आवश्यकता है तो वह है एनवायरनमेंट सेवी होना. यदि एनवायरनमेंट बचेगा तो ही मैं बचूंगा. हमारे पड़ोसी देश चीन में ऑक्सीजन खरीदी जा रही है. हम भी इसके मुहाने पर ही खड़े हुए हैं. मैं समस्या आने पर रिएक्ट करूंगा या समस्या आने से पहले तैयारी करूंगा, ये मुझ पर निर्भर करता है. अंत में फिल्मकार और कहानीकार पीयूष मिश्रा की चार पंक्तियां. जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया. छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी संभालो ये दुनिया, कटपिट के रातों में पलने लगेगी संभालो ये दुनिया.
1: पर्यावरण सुरक्षा के बढ़ते खतरे, इस विषय पर आप सुन रहे थे डॉक्टर कुमार किंजल भारद्वाज की वार्ता. इसी के साथ कार्यक्रम विविधा अब यहीं समाप्त होता है. हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं. हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होगा. कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें.

0: सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित

0: प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में हैं। सर संघचालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चली, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई। इस बार परीक्षा से पहले चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से 37,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स STF ने कल अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी STF ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। STF के अधिकारियों ने बताया कि NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं

0: में अदालत में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट कल दाखिल की गई। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
1: जैसा कि

0: क्रम में जारी रहेगा।
1: हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी, फ्लड पीएससी, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज लखनऊ में संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थवाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और लोगों को फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मीडियम वेव 196.1 मीटर 31523 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आपकी रेडियो हम सफर मुगल दीवारे आ गई है लेकर आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग खुश और तरोताजा होंगे। वैसे तो मुझे पता ही है कि गर्मी के बढ़ते तापमान ने दिन का सुकून और रात की नींद उड़ा दी है। पंखा से राहत तो

बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कूलर और एसी रात राहत तो पहुंचाते हैं, पर जब महीने के लास्ट में बिजली का बिल देखो तो तन बदन और दिमाग का तापमान बढ़ जाता है। इंसान करे तो क्या करे, तो जीने में और जिंदा रहने में फर्क तो होता ही है। अगर हम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं तो जब तक सांसें हैं तब तक किसी भी तरीके से जी लेंगे। सुख दुख से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पर अगर

जिसका जिक्र हम आज अपने इस कार्यक्रम में आगे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक गीत, और हाँ, इस गीत में वो इशारा है जिसपे हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए और थिरकिए।

0: श्रोताओं, आज का विषय हर घर, हर जेब, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। वो है बढ़ती हुई महंगाई। आज बाजार जाकर सामान खरीदो या घर मंगाओ, पता चलता है कि जो चीजें पहले इतने की मिलती थी, अब वही चीज उतने की मिल रही है। अब अगर पैसे से समझौता नहीं करना है तो फिर क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा। खाने पीने की चीज से लेकर घूमने तक, कपड़े से लेकर दवाइयों तक, रसोई से लेकर स्कूल कॉलेज तक, हर चीज महंगी हो चली है। जिससे हो क्या रहा है, या यूं कहें कि समस्या अब सिर्फ आपकी जेब को नहीं बल्कि आपकी सोच पर भी असर डालने लगी है, है ना? डर, तनाव, सेहत सब महंगाई के बोझ तले डूबे जा रहे हैं। ईएमआई कैसे भरेंगे, बच्चों की फीस का क्या होगा, घर का खर्च, दवाइयों का खर्च कहां से उठाएंगे? कुछ लोग किस्मत को दोष दे रहे हैं, तो कुछ सरकार को दोष दे रहे हैं, तो कुछ लोग खुद को ही कमजोर समझने लगे। अब बात सही भी है एक हद तक कि महंगाई तो बढ़ रही है और आमदनी नहीं बढ़ रही, लेकिन श्रोताओं, कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त हमारा इम्तिहान लेने आता है। इन मुश्किलों से घबरा कर हार मान लिया तो फिर क्या ही किया, समझदारी से तो हर मुश्किल आसान किया जा सकता है। श्रोताओं, आखिर महंगाई अचानक बढ़ती क्यों है, तो आइए हम इस पे बात करते हैं। तो श्रोताओं, अचानक कुछ भी नहीं होता, बस हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। वैश्विक निगाहों से अगर देखें तो विश्व में युद्ध चल रहा है, जिसका थोड़ा बहुत असर तो बाकी देशों पर भी पड़ेगा ही। पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना महंगा हो जाएगा, अगर बेमौसम बारिश होगी और फसल खराब हो जाएगा तो खाने पीने का सामान भी महंगा होगा। मांग ज्यादा है और सामान कम है तो भी महंगाई बढ़ेगी, पर ऐसा भी नहीं है कि वक्त सिर्फ भारत पर आया है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आता है। हमारा देश हमारा घर है, हर घर की हालत जब खराब होती है, एक ऐसा समय आता है जब चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं, तो देश में एक फैसला करके देश घर का जो मुखिया होता है वो सारी चीजों को सुधारने की कोशिश तो करता है। आपको क्या लगता है कि जो बातें हैं बहुत लंबी खिंच गई है ना, तो यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है।
1: मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

देशवासियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान में कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। हमारा फर्ज है कि हम इसमें उनका सहयोग करें। यहाँ पर हमें संयम, समझदारी, जागरूकता को दिखाना होगा। महंगाई का असर कभी कभी रिश्तों पर या सेहत पर नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हम ये बोल देते हैं ना कि थोड़ा कम तेल डाला करो खाने में, कभी दाल मत बनाओ, और ये क्या बात है कि दवाई दवाई करते रहते हो, अब वगैरह वगैरह। आवाज में तनाव या गुस्सा, अंदाज में झुंझलाहट, ये सब रिश्तों के मिठास को कम कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि सब की समझदारी से एक साथ बैठकर एक बढ़िया सा बजट बनाया जाए कि घर को कैसे चलाना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर एक गाना सुनकर बजट बनाया जाए, वो भी ये गाना, तो कमाल की बात हो जाएगी।

जी श्रुताओ, तो बात घर बैठे और देश की हो रही थी। तो जब घर में कभी कभी माहौल को संभालने के लिए घर के मुखिया को कड़ा कदम उठाना पड़ता है और बाकी सदस्य मुखिया के फैसले पर विश्वास कर उनका सहयोग करते हैं, ठीक वैसे ही देश के मुखिया को भी।

दुनिया ये गोल है, अंदर से पोल है, रुपये का मोल है, बाकी सब झोल है। इनकम हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा। जीवन की गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी है ठन्नी, खर्चा

जी श्रोताओं, तो हम बात कर रहे थे कि बजट कैसे बनाएं। तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा बजट होना चाहिए जिसमें ज़रूरत को शामिल किया जाए, शौक को नहीं। क्या चाहिए नहीं, बल्कि किसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है, इस पे ध्यान दिया जाए। ऑनलाइन ख़रीदारी की या बाहर पार्टियां करने को या बेवजह घूमने पर कम से कम अभी तो रोक लगा देना चाहिए। फल, दूध, दही, अन्न, दवाइयाँ, पढ़ाई, सेहत, ऑफिस, ये सब तो ज़रूरी हैं, उन्हें कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, है ना भाई। हर चीज़ के लिए सरकार को दोष देना ठीक नहीं है, सरकार का सहयोग भी कीजिए। रोज़गार लेने वाले भी बनिए, लेकिन रोज़गार देना भी शुरू कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि जागरूक बनिए, कालाबाजारी ना कीजिए, ना ही करने दीजिए। इस वक्त आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग भी कम नहीं है, मजबूरी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ आपको आवाज उठाना होगा। तो खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, संतुलित और संयमित रहिए, और सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा। फिर मिलेंगे, तब तक सुनिए ये एक और गाना और अपनी रेडियो हम सफर मुकुल तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

और हाँ, एक बात और कहना मैं भूल गई कि मुकद्दर का सिकंदर अगर बनना है तो महंगाई से लड़ना होगा। सरकार को दोष देने के बजाय हमें उस लायक बनना होगा कि हम अपना भी खर्च उठा सकें और सामने वाले की भी मदद कर सकें, क्योंकि बुरे वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बहुत जल्दी चला भी जाता है और अच्छा वक्त भी आता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नए गाने नए पुराने। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्रोताओं राजा फिल्म के उस गीत के साथ जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण।

तो पागल हैं। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत था उत्तम सिंह का।

अभी आप सुन रहे थे सिर्फ तुम फिल्म में अलका याग्निक की आवाज में समीर का लिखा गीत, संगीत था नदीम श्रवण का। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म मोहरा से, जिसमें युगल स्वर है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और संगीत है विजय शाह का।

मोरा फिल्म के इस गीत के साथ ही गाने नए पुराने कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म खामोशी से, आवाज़ है हेमंत कुमार।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म प्रिंस का वो गीत, जिसे लिखा है हजरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

वो कौन थी? इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत, संगीत था मदन मोहन का। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार है मजरूर सुल्तानपुरी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफी के गाए फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल,

0: ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साथ मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले

0: पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज ठट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का

0: प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
1: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने सीबीएसई के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखलो हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत तआवुन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्त की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाजे के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़वामे मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सिफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तिजारत के हक में भारत के मौकिफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल

0: ईरान निज दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकत दारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकत दारों में से एक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दिफाई शराकत दारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिवानशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। यह सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तस्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैना धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर यह सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले जबकि दिवांशु पांडा को 1,49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो उन मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी उमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिया के मुताबिक जिलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को उन मरकजों में भेजने के लिए जरूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीके कार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए सीबीएसई की मदद की गरज से आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला सीबीएसई के नतायज के बाद की खिदमत से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तश्वीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि आईआईटीज के माहिरीन की ये टीम निजाम में तकनीकी बेहतरी लाने नेज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ

0: बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के साथ जरूरी इंजमाम में सीबीएसई की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं, जिससे लोग दोपहर के औकात में घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली भी शदीद गर्मी की जद में है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कल उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की पेशगोई की है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल के हिमालयी इलाके, आसाम और मेघालय में कल शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की लपेट में है। पूरी रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और कई शहरों में दर्जा हरारत 43 डिग्री से तजावज कर गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश को इस वक्त शदीद गर्मी का सामना है। बेशतर शहरों में दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावज कर गया है। आज महकमा मौसमियात ने चार अजला टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। दतिया, नेवाड़ा और सागर समेत 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 22 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह रियासत के 37 अजला गर्मी की शिद्दत से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम अगले चार रोज तक शदीद गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा पानी पिएं, नीज बच्चों और बुजुर्गों को खसूसी निगहदाश्त में रखा जाए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: महाराष्ट्र में अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों में शदीद गर्मी के पेश नजर मंगल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दत के दौरान अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद, जिनमें 7 खवातीन थीं, आज उत्तर कन्नड़ा जिले के थट्टेहक्कालु दरिया में डूब गए। ये लोग ताजा पानी की सीपियां चुन रहे थे कि तेज हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में डूबने से हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के तहत ताजियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दिल्ली की एक 4 रुकनी मेडिकल टीम ने भोपाल में मॉडल से अदाकारा का पेशा अख्तियार करने वाली ट्रिशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद ट्रिशा का जस्ते खाकी उनके कुनबे के सुपुर्द कर दिया गया और उनकी आखिरी रसूम भोपाल में भदभदा क्रिमेशन में अदा की जाएंगी। 33 साल ट्रिशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुनबे ने उनके ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने ने उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम आयद किए हैं। पुलिस ने ट्रिशा के शौहर समर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है, जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरिबाल सिंह साबिक जिला जज हैं, उन पर भी जहेज के लिए हरासा किए जाने के इल्जाम हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दीगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्जाम था, जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाहे पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लथेरा और काजल ढोजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सागवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रे

एक रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोहरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। यह धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नजदीक गोलियां चलने के वाकये के बाद तेजी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दद तारीख रही है और ये वाकया वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाकये के चंद रोज बाद पेश आया है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत की है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

इन हेल्थ केयर डॉक्टर आर यूजिंग AI टू डिटेक्ट डिसीज फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली. इन एजुकेशन स्टूडेंट इन रिमोट विलेजेस कैन एक्सेस द सेम क्वालिटी ऑफ लर्निंग एज डोज इन बिग सिटीज. इन फार्मिंग स्मार्ट टूल्स हेल्प फार्मर्स टू सेव वाटर रिड्यूस कॉस्ट एंड ग्रो बेटर क्रॉप. एंड इन क्लाइमेट साइंस द फील्ड आई वर्क इन डेटा एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस डेट अफेक्ट ऑल ऑफ अस. Our weather is changing, rains come late, summer are getting hotter, floods happen in place that never saw floods before. Our farmers feel that every single day. And slowly all of us are feeling it too. But I am not here to only talk about the problem. I want to talk about the solution. Today young people are using technology to fight climate change. Solar energy has become cheaper than before. Farmers are getting weather updates on their phone so they can plan better. Startups are

0: हरिशंकर भट्टाचार्य जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगाशंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्मभूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: In the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight, we present Sitar Recital by Pandit Hrishankar Bhattacharya. Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned Sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Hrishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Gangashankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hrishankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan, Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hrishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for

0: Cultural Relations, Pandit Harushankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harushankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
1: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
0: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी, बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़। द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal followed by madhyalaya teen tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: में सुन रहे थे। आपके साथ तबली पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहर